0: But our top story at the moment, the breaking news we're getting, Home Minister Amit Shah has finally broken his silence on the SIR debate and has hit out at Congress leader Rahul Gandhi over the protest. Amit Shah claiming that Rahul can't win people's trust by lying. Home Minister claims Congress lost the elections even before the SIR exercise. Home Minister accusing Rahul Gandhi of using SIR to shield ghuspetias or intruders. Amit Shah claiming politics of negativity has been rejected, but he stayed silent on the police's role in the Delhi protest. Listen in to what Amit Shah had to say.
1: मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी एसआईआर के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। मैं श्री राहुल गांधी जी को सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या ये एसआईआर का परिणाम है? एसआईआर तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है।
0: So while Amit Shah took on Rahul Gandhi, Rahul Gandhi was a day after the United March to the Supreme Court, bringing India bloc leaders for high tea. The leader of the opposition stressing after the meeting that their fight against the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will continue, though it will take a break till Dashera. But the BJP is accusing Rahul Gandhi of making baseless allegations.

0: मैं आज राहुल गांधी को चैलेंज देना चाहता हूं कि पहले अपना ज्ञानेश कुमार का समय जितना आपका सरकार बने पहले सबको आप रिजाइन देने बोलो। केरला में केरला का सरकार को रिजाइन देने बोलो, आप झारखंड में रिजाइन देने बोलो, आप कर्नाटक में रिजाइन देने बोलो, आप तेलंगाना में रिजाइन देने बोलो और आप तमिलनाडु में आपका अलायंस सरकार को रिजाइन देने बोलो और आप अनाउंस भी करो कि अगर ज्ञानेश कुमार सीईसी रहेगा तो अगले उत्तर प्रदेश चुनाव में नहीं लड़ूंगा।
1: सो सॉरी।

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी।
5: यू नो डिजाइन कितने लाख से भी ज्यादा डूट
6: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड, खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
7: एक परिवार अटूट भरोसा।
8: So many payment apps, but which one is safe?
9: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
10: It's the Mahi way.

0: यार लोन भूल गया मैरी जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: So many payment apps, but which one is safe?
5: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
6: It's the Mahi way.

0: Indian racing prodigy Atika Mir has received another major boost in a burgeoning career, signing with Kart Republic. The team owned by Italian veteran Dino Chiesa, who helped launch the careers of multiple Formula One world champions, including Lewis Hamilton. The 11-year-old has joined KR mid-season after impressing Chiesa with her performances across several karting championships in Europe. The impressive list of F1 drivers associated with KR and Chiesa includes reigning world champion Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri, current championship leader Kimi Antonelli, and Arvid Lindblad, among others. Chiesa also played a crucial role in shaping the careers of 7-time world champion Hamilton and 2016 title winner Nico Rosberg. Atika Mir is targeting a historic breakthrough, aiming to become the first woman to reach Formula One since 1992. Earlier this season, Atika grabbed headlines by out-qualifying Mercedes F1 junior Nicolo Perico to secure pole position in round 3 of the Champions of the Future Academy series in Italy. Now, Atika begins her new chapter with KR at the FIA World Cup in Italy, hoping to take another significant step towards her F1 dream.
1: Lava Smartphone 3 Home Service. Jio celebrating 10 years.
2: A very good morning to all our viewers. You're watching The Burning Question on India Today with me, Anjali Pandey, and we have some big breaking news coming in. CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka have been sent to 5-day judicial custody. They are being sent to Tihar jail. That's the big update that's coming in. They have been jailed for violating the bail bond that they had signed on Sunday after they were detained on Saturday ahead of the protest. And now 5-day Tihar stint for Saurav Das and Ashutosh Ranka, the two co-conveners of the Cockroach Janata Party. The cops have made CJP's Ajinkya Shinde sign a bond. Remember, Ajinkya Shinde was also detained along with Saurav Das and Ashutosh Ranka yesterday. But Ajinkya Shinde has been made to sign a bail bond and he has been released along with the other workers. But it's Saurav Das and Ashutosh Ranka who have now been sent to Tihar jail for 5 days. And the charges that they violated the bail bond that they had signed, in which they had to maintain peace for a year. The charge is that one-year peace bond has been violated by these two CJP leaders. So the police are having Ajinkya Shinde execute a bond, while Saurav Das and Ashutosh Ranka have been sent to Tihar jail in judicial custody for 5 days for violating their bail bonds.
3: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है इनका उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है 163 का उल्लंघन है उनके हिसाब से पहली बार एक प्राय किसी उनका कहना है कि एक प्राय पब्लिक बॉडी पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेंट एंड फाइलिंग द कंप्लेंट दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके और जिस केस के रेफरेंस में या जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है उसको यहाँ पे यूज करते हुए इसका मिसयूज करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है
4: आपको पता होगा आज आशुतोष सौरभ दास और मैं और हमारे साथ सीजीपी के वॉलंटियर्स हम जंतर मंतर की ओर गए थे और हमने बस भारत का झंडा लहराया और भारत माता की जय बोला तो इसके लिए इस मोदी शाह के तानाशाही सरकार ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया है ये तानाशाही सरकार का अंत होके रहेगा आज आशुतोष का बर्थडे था उसके बर्थडे के दिन उन्होंने भारत माता की जय और तिरंगा का झंडा लहराने के लिए उनको जेल में भेज दिया है मेरा ये पूरे देश की जनता से कहना है कि इस सरकार ने अपने सिस्टम का यूज करते हुए अपने अधिकारों को गलत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तोड़ने की कोशिश शुरू की है मेरा

0: एक्सिस बैंक दिल से ओपन।
1: गिरनार एक चाय हो जाए।
0: AU स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: भीम भारत का अपना पेमेंट्स ऐप।

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: तुम सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் விஜயவாடா மக்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ.
1: ஸ்டார் பவர், பொலிட்டிக்கல் பவர் அண்ட் அ க்ரூஷியல் வாட்டர் ஷேரிங் மிஷன். Our Chief Minister Joseph Vijay's Vijayawada visit was a mix of fan frenzy, festive color and high stakes diplomacy. Talapati's Andhra trip had all the makings of a blockbuster. Chief Minister Vijay's first stop was a sacred Kanaka Durga temple. Dressed in a traditional shirt and dhoti, he offered prayers to Goddess Kanaka Durga, with priests welcoming him with Purna Kumbham and performing special rituals. And all through, fans gathered at every point to catch the glimpse of Vijay. After the spiritual start came the political parleys. Andhra Chief Minister Chandrababu Naidu and Minister Nara Lokesh welcomed Vijay. The exchange of courtesies and gifts made for striking visuals. Two chief ministers from rival political camps sharing the same frame with one cause to address their state's water concerns. The leaders discussed the proposed Godavari-Kaveri River linking project as a long-term response to water scarcity.
2: Krishna Vamsadhara Godavari nadulu anusandhanam chestam, bhavishyattulo Godavari Kaveri kuda anusandhanam chesi desam mottam dakshina bharat deshamlo neeti samasyana parishkaram chestam.
3: Godavari-Kaveri linkage project represents important opportunity for augmenting water resources in southern states. I request the Government of India to accord priority and take it up as a national project.
1: Then came the cultural connect. At Punami Ghat, Vijay joined the Vijayawada Utsav celebrations against the backdrop of the Krishna River, greeted by cheering fans. And Thalapati struck a chord with his Telugu-speaking host, briefly addressing the gathering in Telugu.
0: En nenjil kudiyirukkum Vijayawada makkal, ungal anaivarukkum ennudaiya vanakkam, nandri.
4: Viewers, as we speak, there is a press conference that's being done by the National Youth Congress at this given point. Let's listen in to them.
5: चल रही हो सामने तो मैं गोली भी खा लूंगा. अगर अभी AK-47 मेरे सामने हो, मैं 6 दिन से मास्क में चल रहा हूँ क्योंकि तिहाड़ जेल से बेल पे बाहर हूँ मैं, तो मैं मास्क लगा के चल रहा हूँ क्योंकि बेल बोल दिया कि अगर प्रोटेस्ट में जाओगे तो आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी.
6: प्रोटेस्ट में जाओगे फिर से?
5: बिल्कुल जाऊंगा, अभी जाऊंगा, जहाँ जाना होगा वहाँ जाऊंगा.
6: सर गायब हो गया?
5: बिल्कुल हो गया सर.
6: आप बोलो.
7: हाय, मेरा नाम रमित है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ. और उस दिन मेरे को भी ब्रूटली 11 अक्टूबर को डिटेन किया गया. और वो सबसे फनी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको इलीगली डिटेन नहीं करना है प्रोटेस्टर्स को, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को, पर मेरे को बजरंग दल और RSS के गुंडों के बोलने पर डिटेन किया गया. और वो गुंडे वो थे जिनके पास मेरे पास उनका वीडियो है. सॉरी, मेरे पास उनका वीडियो है जहाँ पर वो थ्रेटन कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स को. उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में पत्थर है. और वो सब होने के बावजूद वही सेम गुंडे जाके पुलिस को बोलते हैं, और पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ना सुनने के बजाय उन गुंडों की सुन के उन्होंने मेरे को ब्रूटली डिटेन किया. और डिटेंशन बस में मैंने देखा कि वो कैसे लोगों को मार मार के अंदर घुसा रहे थे. और काफ़ी लोग थे जिनका उन्होंने फ़ोन भी छीना पुलिस ने, और फ़ोन फॉर्मेट करके वापस दे दिया. और बहुत लोगों के फ़ोन छीन लिए और कभी वापस दिए भी नहीं. प्लस मेरी डिटेंशन बस में कम से कम 15 फीमेल्स थी और एक भी फीमेल ऑफिसर नहीं थी.
6: अच्छा एक बात बताओ, ये हाथ में क्या पकड़े?
7: ये बेसिकली 20 जुलाई को भी मेरे सर पे डंडा मारा था एक RAF वाले सर ने.
6: तो आपका रिस्पांस क्या है डंडे का? रिस्पांस कैसा हो गया?
7: डंडे का रिस्पांस डंडा ही है मेरा, पर ये थोड़ा प्यार वाला डंडा है, उनका थोड़ा नफरत वाला डंडा.
6: कैसे होता है?
7: Mm-hmm.

0: थैंक यू. नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा बेसिकली. थैंक यू.
1: अच्छा ये मैं स्पेशल इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ. ये शेरनी है, ये शेरनी है, जान रहे हो उसको? ये शेरनी है, इसको मारा, कोई डर नहीं लगा? डर लगा?
2: नहीं लगा सर. नहीं लगा, नहीं लगा.
1: नफरत थी दिल में?
2: नफरत नहीं थी, प्रेम था. जितना मारा हमने ये बोला खुला आज मन जितना है उतना भर के मारो.
1: तो थोड़ा बताओ.
2: कल हम लोग सीपी में एनएसए के तमाम कार्यकर्ता पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमारे को डिटेन किया गया 3 बसों में. हमारे तमाम साथी थे तमाम बसों में, 30-30, 40-40 सब बसों में हम लोग, हमारे को पुलिस ने डिटेन किया था. तो हमारी जो बस में हम लोग 2 लड़कियां थी और 20-30 हमारे और भी एनएसए के साथी थे. ऐसा होता है कि उसमें महिला कांस्टेबल भी होती है जिसका नाम चंचल यादव होता है, और वो महिला कांस्टेबल हम डिटेन होने के बाद हम कोशिश कर रहे थे कि हम गेट से फिर से नीचे उतरकर फिर से हम लोग प्रोटेस्ट में आगे लीड करते हैं, बस को रोकने का प्रयास करते हैं कि हम लोग बस से उतर के कैसे तैसे बस के नीचे बैठ जाते हैं कि कैसे भी हमारा प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रन करता रहे. लेकिन चंचल यादव जी ऐसा करती है कि वो मेरे गले को जोर से दबा के मुझे पुश कर देती है ताकि मैं पीछे जाके सीट पे पीछे गिर जाती हूँ, और फिर मुझे मेरे मुंह पे ऐसे मतलब स्क्रैच, मतलब पूरे नाखूनों से पूरा स्क्रैच करके मेरे यहाँ पे स्क्रैच भी आया, इधर कान पे भी मतलब पूरा लगा है. और स्क्रैच करने के बाद वो मुझे, मैं उनके झड़प देती हूँ तो वो मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि लो तुम्हारे मुंह पे एक और तमाचा. और उसके बाद वो फिर मेरे मतलब मैं उठने की कोशिश करती हूँ तो वो उनमें इतनी ताकत होती है कि मेरे से उठा नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं अपने एफर्ट्स लगा के पूरा उठती हूँ. तो वो मेरे जोर से बाल पकड़ लेती है और बाल पकड़ने के बाद वो कंटिन्यू मुझे मतलब बस में आगे पीछे करके हम लोग मतलब मैं मेरा एफर्ट कर बचाने का एफर्ट करती हूँ, वो अपनी ओर से अपनी ताकत लगाती है. उसके बाद ऐसा होता है कि मैं नीचे गिर जाती हूँ और वो मेरे ऊपर आ जाती है. उसके बाद उन्होंने मेरा और जोर से गला दबा के यहाँ मेरे कान के ऊपर, मतलब मैंने इयररिंग डाला हुआ था, और पूरा जूते से रब करके और गले से रब करके मतलब पूरा कान का रंग चेंज हो गया है, मतलब ब्लू कलर का कान हो गया है और उसमें इयररिंग अंदर चला गया. शाम को मतलब हॉस्पिटल हम लोग गए तो डॉक्टर ने इयररिंग निकाला और ऐसे हालात थे. चंचल यादव बोलती है कि तुम लोगों को तो ज्यादा नेती है ना, हम लोग बनाते हैं, तुम देखो अभी नेती तुम्हारी नेतागिरी पूरी झाड़ते हैं हम लोग. उसके बाद चंचल यादव जी हमारे को वहां से पीसफुली तरीके से मतलब वहां लात गुस्से मार के वो निकल जाती हैं, और हम लोग जो थे वहां पे मेल फोर्सेज जितनी भी होती है हमारी बस में वो चुपचाप निकल जाती है और आगे मेल फोर्सेज हमारे साथ बस में डिटेन करके रहती है हमारे साथ में. उसके बाद हम लोग जैसे कैनोट प्लेस पुलिस थाने के पास से हम लोग निकलते हैं तो चंचल यादव जी वहां पे बस को रोकती है और मेरे साथ मैं और एक केरला की साथी होती है तीरा जो मुझे प्रोटेक्ट करती है, इन दोनों को पर्सनली मुझे टारगेट करने के चक्कर में इसको भी मतलब इतना फर्स्ट टाइम इसको इतना जोर से घिसटा गया रोड पे और इसके कीक मारी गई, प्राइवेट पार्ट्स पर मारी गई. मेरे भी इंटरली बैक की मतलब लेफ्ट की मारा, मतलब पूरा पुश किया गया पेट को. उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू लड़ते लड़ते वहां तक हम लोगों को मतलब बस से खींचा गया और थाने में ले जाया गया, इसको नीचे बेसमेंट में ले जाया गया, मुझे रूम नंबर 107 में ले जाया गया. उसके बाद वहाँ पे रूम में वो आती हैं 5-7 लेडी जो सिविल ड्रेस में होती हैं और चंचल यादव भी होती है कि बोलती है अब तेरा नेता कहाँ गया, तेरी नेतागिरी मैं निकालती हूँ. तो उसके बाद चंचल यादव मुझे रूम में बंद करके और मुझे इतना जोर से पीटती है कि पीछे 7-8 डंडे मुँह के पंच जितना उनके एफर्ट हो सकते थे मुझे 7-8 लोगों ने दम के पीटा. उसके बाद मुझे सीटियों से घिसीट के नीचे लाया गया और फिर मुझे बोलती है कि सीटियों पे नहीं नीचे फर्श पे बैठो तुम, फिर बोली पैर सीधे करो. फिर हमने पैर सीधे किए तो मेरे पैरों पे नीचे ब्लू हो गए हैं, पैरों पे डंडे मार मार के मतलब 10 इस लेफ्ट पे मारे 10 राइट पे मारे. उसके बाद चंचल यादव बोलती है और बोल बनाऊं तेरे को नेता, तो मतलब ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं प्रोटेस्ट में. उसके बाद भी मैंने बोला आप जितना मारना उतना मार लीजिए क्योंकि हम लोग हौसला नहीं आने वाले, हम लोग इस लड़ाई में 10 साल कंटिन्यू दे चुके हैं, हमारा तो पूरा बनवास इधर ही जाएगा और ये कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये हमें जीतना ही होगा. तो मैंने बोला मैम अगर आप हम लोग योग्य हैं तो देखते हैं आने वाले टाइम में आप कहाँ होती हैं हम कहाँ होते हैं. और अतीरा ने भी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी और इसने मुझे ताकत दी और ये छोटी बहन है ये आपको दो शब्द और कहेंगी.
0: यू कैन स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, व्हाटएवर यू.
3: यस, आई एम आदिरा फ्रॉम केरला स्टडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी. यस्टरडे
0: शी हैज लॉस्ट हर हियरिंग इन 1 ईयर. ओके, शी इज डेफ इन 1 ईयर. Because she's been beaten in that year, she cannot hear anymore. Last time I showed you a boy who's blinded in one eye. Now she's deaf in 1 ear. Just so that you know.
3: when they detain us, there is no police officers in the bus. So I just asked, where is lady constable? If they want to detain us, there is mandatory at least eight lady constable. Then the bus moved and stopped Cannot Place police station. Udhar, there is Chanjal. Chanjal Yadav and other teen or child police officers went in the bus and dragged me in the road. And also there is a SHO in Cannot Place police station. He told me, the lady police officer, taken away to basement. There is no CCTV. You can do anything. So they punch me here. Mera live. And continuously beaten my pura cheek. There is my eye also have some problem. And ear had some problem. Then
4: you also in your private part?
3: Yeah. Then I back just chop. Then they started to kick my private part and also underbelly and back belly also. They didn't consider me as a human. They didn't consider woman. They just consider me as a human.
5: Hi, I'm Arjun. I'm from Kerala. I live in Delhi since the last 3 years. I was at CP. I was taken from CP and I was a protester. Along with me, there were protesters, there were non-protesters, there were journalists, there were lawyers, there were minors. We were taken to a spot near LIC, Raji Chowk Mehi. So there is a makeshift detention area that Delhi police has created there. It is heavily barricaded, it is heavily staffed. There is no entry for media, there is no entry for civilians. Nobody knows what happens inside that area. The bus took us there and we were made to sit in rows, 4 to 5 rows, 8 to 10 people each in the rows. Our phones were snatched away. There was a friend of mine, his phone was snatched away. The police abused him they asked for the password, they searched his gallery. They went to the recent deleted part, they went to the hidden folders, completely arbitrary use of force. Around 10 to 15 detainees lost their phones. They still haven't gotten their phones back. After this, additional DCP Ashok Bishnoi, he was in charge of this detention area. He played a good cop, bad cop play production in front of us. So he acted as a good cop and he was like, please cooperate with us, we'll do nothing, we'll safely drop you home. He gave us reassurances. After that, the bad cops would enter and they'll be like, no sir, no sir, don't say that. We want to beat them up. And then the good cop will say, no, I have just given them the reassurance, so I can't back off from that. The next moment, we were called to a jail van, which had 4 to 5 compartments. Each compartment can accommodate 10 people each. So it can easily accommodate 50 plus people. There were police, there were Delhi police commandos, 3 to 4 people standing in queue to beat us up. I was called third or fourth. I entered the jail van and I was punched on my face and I'm on the floor. They kicked me on my chest, on my back, on my private parts. They strangled me. The first constable passed me to the second passed me to the third passed me to the fourth, and the fourth put me behind the cell inside. After me, there were 4 minors who went through the same ordeal. 16 and 17-year-old non-protesters went through the same ordeal. They were pleading, they were begging the police officers to leave them. They were not even there to protest. They just happened to be at CP at that point of time. They were Muslims. After that, an injured person, he was already injured, his hand was already fractured, he was also beaten up the same way, he was also in my compartment. Our phones were snatched away, the minors had no phone with them to inform their parents that they've been detained. The bus left at around 5:30, the bus took us to Panduwala Khurd, which is 35 to 40 kilometers away from the city. The bus reached there at around 7:30 p.m. Some of us had our phones with us. We explored all possible means to inform our friends and whoever is in Delhi, the network in Delhi. They reached the detention center within an hour. However, the people at the detention center in Pandwala Khurd, they too took the details from the minors, 16 and 17 years old. They had the names of the minors, they had the age of the minors, they had all the details of the minors. Even they didn't bother to provide any provision, any care, any attention to these minors. And an hour later, some of my friends came, some of the lawyers came. They demanded that the details of the minors be given to them. Had there been no minors in our van, we wouldn't have been released within 3 hours of being detained. They had all the arrangements made inside the detention center to keep us there the whole night. The minors, even while leaving the detention centers, they didn't have mobile phones with them. They didn't have money to go back home. The police didn't make any arrangements to drop them back home. There was an officer, a senior officer who came after 2 hours. It is only after the officer came, the police took some interest in giving first aid to the injured detainees. My request is, please expose this makeshift detention center near LIC. This is completely illegal. Where people are being sorted, it reminded me of the Nazi time. And I also demand to Rahulji and also the opposition, please take the fight ahead, and there should be a Nuremberg trials in India. Thank you.
6: हमारे खिलाफ FIR की गई है जिसमें हम 18 19 साल के बच्चे हैं. पार्लियामेंट थाने के बाहर से जब डिटेन किया जा रहा था, पुलिस ने अब क्या किया है कि कुछ बच्चों को बस में डाल लेते हैं और जो थोड़ा बहुत पुश करते हैं अपने बहन भाइयों को बाहर निकालने के लिए, तो उनको बोलते हैं तुम्हें नेता बनाएंगे, जिसमें कि मैं और समर्थ हम दोनों को पार्लियामेंट थाने में अंदर ले जाया गया, मारा पीटा गया, गाड़ी में ले जाते हुए पार्लियामेंट थाने से दिल्ली कैंट तक गाड़ी में भी मारा गया. ये बोला गया नेताओं को बुलाओ, सारी चीज़ें उन्होंने जितनी गंदी गालियां हो सकती थी वो सारी चीज़ें की, मारने पीटने की, अंकित कसाना ने हमें धमकी दी, सारी चीज़ें की. और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ से जाने के बाद जब हम जेल जाते हैं, तिहाड़ जेल में हमें भेजा गया, मेरे को इतनी चोट थी मैं बेहोश था, व्हील चेयर पर चल रहा था, कोर्ट में पेश किया गया, जज ने भी आंखें उठा के ऐसे नहीं देखी, पुलिस वाले ने बोला जज ने बोला धर्मेंद्र, तो पुलिस वाले ने हाथ मेरा ऐसे करके ऊपर उठा दिया. तो सब लोग ये इनलीगली कर रहे हैं. तो मैं आप सभी से, सर से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका जो पर्दे के पीछे जो ये काम कर रहे हैं, इस सबको एक्सपोज किया जाए. हम जैसे बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, डिटेंशन में कभी कोई मारा पीटा नहीं जाता, मारा पीटा जा रहा है, माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं, लड़कों को गंदा बोला जा रहा है. FIR क्या किया इन्होंने, जिस गाड़ी में था नहीं उस गाड़ी के मैंने शीशे तोड़े हैं, महिला पुलिसकर्मियों को मैंने अटैक किया है और 50 लोग मैंने इकट्ठे किए हैं, वो सारी धाराएं हम 17-18 बच्चों पर पेश कर दी. तो ये हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आज आया था तो मैं रोने लगा सर को देख के, मैं अब रो नहीं रहा. मैं कई दिन से छिपा हुआ था मास्क लगा के, पर मुझे आज सुबह से हंसी आ रही है. मैं हंस रहा हूँ, खुश हूँ, क्योंकि सर ने बोला कि हम साथ हैं, आप डरो नहीं, आप हमारे शेर हो. तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम सब बच्चों की बिना बात की जो FIR है ये वापिस हो. हमको जितना डर, ये बोलते हैं कि तुम प्रोटेस्ट करना भूल जाओगे, तुम 500 रुपए पे आए हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू मुसलमान है तो क्या देश में हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते. मैंने बोला हाँ मैं मुसलमान हूँ, मान लो देशद्रोही का केस लगा दो, जेल में डाल दो, जो मर्जी करना है कर दो, आज के बाद ना मैं घर में रहूंगा, जहाँ प्रोटेस्ट होगा मैं वहां जाऊंगा, आप पे गोली मारी जाए गोली मारो, जो मर्जी करना है वो कर लो, हम डरने वाले नहीं है. मोहब्बत वाले नेता के यहाँ आ गए, अब हम पीछे नहीं हटेंगे.
7: क्या बात.
2: साथियों, जिस प्रकार से कल पुलिस थाने में पुलिस का जो व्यवहार था वो बहुत ही अमानवीय व्यवहार था, और हम ये कहना चाहते हैं कि जो सुखविंदर सिंह मलिक जो वहाँ के SHO हैं उनके सामने हमें पीटा गया था. पहले वो बोलते हैं कि आप लोगों को पीटा गया, लेकिन जब हम लोग ज्यादा लोगों की संख्या हो जाती है तो वो बोलते हैं नहीं नहीं बेटा आपको तो पीटा ही नहीं गया, मैंने तो चाय की पूछी, पानी की पूछी, आप लोगों की आपकी सारी व्यवस्था कर रहा हूँ, बेटा आपको तो कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे आप अच्छे बच्चे हो. मतलब वो हमें कैसे कैसे मतलब मिसगाइड करने को लगे हुए थे. लेकिन हम कहना चाहते हैं कि पुलिस जिस प्रकार से आजाद भारत में अंग्रेजों ने इस देश में शोषण किया था गरीबों और मजदूरों का, उसी तरीके से आज हमारे देश की पुलिस है, उसकी प्राथमिकता है कि पब्लिक की सुरक्षा करनी चाहिए. लेकिन आज वही पुलिस हम लोगों को अपराधी और गुंडों की तरह हमारा शोषण करती है, हमारी आवाज दबाने का और दमन करने का काम करती है. उसी पुलिस को हम कहना चाहते हैं, उन्होंने हमें यह भी कहा था तुम तो FIR तक करके दिखा देना. आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बड़े भाई के जैसे हमारे को बोल रहे तुम हमारी शेरनिया हो, तो हमें गर्व है कि हम लोग FIR तो क्या हम हर लड़ाई लड़के दिखाएंगे, इसी भारत में आजाद भारत को आजाद करके दिखाएंगे। जय हिंद जय भारत।
1: तो जैसे मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये इधर आ जाओ, लगाओ पर, ये हिंदुस्तान है। अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूँ, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत। कोई डर रहा है?
7: नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: खुश हो?
2: यस,
1: शाबाश, लव यू, थैंक यू। नहीं नहीं, देखिए देखिए, वो उसके बारे में आप मत घबराइए, वो हमारा काम है, FIR होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है, एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। मैंने कल आप प्रेस वालों से पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, परसों सॉरी, कि आप में से कोई सोचता है कि नरेंद्र मोदी जी सही काम कर रहे हैं? और आपने पहली बार बिना डरे सच्चाई देश को दिखा दी, तो मैं आपको भी प्यार देना चाहता हूं और आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू।
8: राहुल जी, जंतर मंतर,
9: जंतर मंतर जाएंगे राहुल जी,
10: because that was Rahul Gandhi in fact conducting another press conference, but this time he brought in some of the protesters who were in fact caught in between the clashes over the last 3 days. Since October 10th we have seen police action and high police action on the ground in Delhi itself. Protests have continued, be it led by the CJP or be it led by the political parties, the India bloc parties. The protests have continued and they have largely been in and around central Delhi itself. But despite that, we've also seen the police has been in action since October 10th. And when we say in action, there's been quite a heavy hand that's been used by the police. That's the allegation that's coming from the opposition. And we had for ourselves as well seen on the ground the kind of police action that was taken, heavy barricading, the number of personnel that was in fact put all across central Delhi, and of course at the end of the day not just personnel but the fact that the detentions, number of detentions on day one itself, that was October 10, the numbers were as high as 7,000, and then over the next 3 days, that is October 11, 12, 13, today is October 14th, when the India bloc, in fact, yesterday came out to say that they will be putting a halt for the time being on all of the protests, given that it is a festive season. Dasera is right around the corner. But their fight will continue. That is what Rahul Gandhi also ended the very press conference on the note of, that the fight will continue and that now it's no longer a fight which restricts itself to parties, restricts itself to ideologies or certain representations coming to the forefront. It is one voice. That is what the opposition has now come out to say. Even earlier in the day when the CJP leaders Ranka and Saurav Das were arrested. Rahul Gandhi's post that came out on Platform X also said the same thing, that it's no longer about different banners, it's no longer about different voices, but the voice is one, the protest is one. That is the message that was sent out. Rahul Gautam now joining me on the broadcast with more details. Rahul, very good afternoon to you. So this is another press conference that we see coming in from Rahul Gandhi, quite on the similar lines that we'd seen during that pellet gun incident that had taken place during the July protests. This is another perhaps chapter of that, with protesters heavily being detained, some being in quite brutal clashes with the police, a lot of which has been caught on camera as well.
8: Well, you know, it's an attempt on the part of Rahul Gandhi and Congress.
11: Attempt on the part of Rahul Gandhi and Congress Party to showcase that how NSUI cadres, how opposition workers are on the streets, they're up in arms against CAC on the same issue that Congress Party and opposition leaders have been raising for quite some time. And therefore, there were many, NSUI workers who claimed or alleged to have got some injuries, and they met Rahul Gandhi. Rahul Gandhi came outside of his residence along with those injured girls and boys of Congress Party's student wing, that is NSUI. And in fact, everyone was allowed to speak. They shared their ordeal. In a way, Rahul Gandhi is trying to showcase as to how there has been a fight going on the streets, which is being led by youngsters, by the youth of the country. And that's why, in fact, he also spoke at the very end of his press conference. In fact, there are close to six, workers of NSUI. The idea is to get, these voices on the platform so that it could be amplified. And as we ourselves heard, that how NSUI workers alleged that they were manhandled by police personnel, how they were allegedly, assaulted by the paramilitary forces and the other forces that are on ground to contain these ongoing protests. And clearly, it's an attempt on their part, as I was telling you earlier also, to send out this message that the entire opposition is on the streets. There are youngsters who belongs to Congress Party who've been demanding resignation of CAC Ganesh Kumar, but it is actually the administration and police officials who are not allowing a peaceful protest to take place in the very heart of the national capital.
10: You know, Rahul, the problem here is, despite allegations coming in, or despite, we're saying that it's alleged that a lot of this brutality has taken place, but beyond the point, some of it has also been caught on camera. The kind of action that's been taken, the detentions especially that have happened, that has definitely been caught on camera, and the level, the extent of these detentions that have taken place, which is where the entire debate began from, that at the end of the day, was this indeed required? The number of detentions that have taken place, and in some cases, even the way these protesters have been detained, was that indeed required in terms of the numbers and also perhaps the way it was done?
11: Well, I'll take this question straight away to J.B. Mathur, who's Rajya Sabha MP of Congress Party. Ma'am, we've been seeing, NSUI and youth workers on the streets, but this time they're coming out along with Rahul Gandhi, sharing their ordeal, how they were manhandled, although everything has been denied by Delhi police and administration so far.
12: They cannot deny. The reality is this. The youth, the girl, the women, little girls, young girls are brutally attacked. We have the examples right in front of you here. We have Ritu, we have Adira. The way they were brutally attacked, both inside the bus without women police officers inside the bus and taken to a police station, CP police station, and in the basement-like place where they are brutally, even their private parts were stamped. This is the kind of atrocity. They have ear problem, they have eye problem.
11: Rahul Gandhi is now saying that everybody should record whenever police take any action.
12: Evidence is required. That's why Rahul Gandhi is the big brother of everyone. Rahul Gandhi has the concern. Rahul Gandhi is giving them the energy. Rahul Gandhi is giving them the strength. So this is what is happening now. But Amit Shah, this is not just by Delhi police. Amit Shah has given clear instructions, and only on that this kind of behavior by Delhi police to the young girls. But they will not succumb to any pressure. This fight will continue and they will stand with the demands.
11: Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. So that was JB Mathur. She is Rajya Sabha MP from Kerala. And in fact, she accused the Union Home Ministry, saying that the instructions have come from the very from the very highly placed people who are doing this. So as far as Congress is concerned, it is fighting a battle on multiple fronts. You see, they've already filed a petition, so there is a battle going on legal arena. Then you have got people, Congress workers, opposition leaders marching in the national capital and obviously hitting the streets time and again on the same very issue, that is the removal of CAC Ganesh Kumar. And thirdly, we know that how SIR and CAC has become a sort of a rallying point in parliament as well. And as we speak, an impeachment motion, a draft is being circulated, which will be submitted to both the houses of the parliament. And in all likelihood, an impeachment motion will be brought in the next session of the parliament. So this fight, Congress is fighting on multiple fronts. Yesterday only, Rahul Gandhi hosted opposition leaders for high tea. They have decided that they're going to reclaim Jantar Mantar, which has now been denotified as a protest site by Delhi police. So clearly, it seems that Congress has decided to take this to a logical end, and many in the party actually believe that this is actually creating pressure on the government. And the idea or the objective of doing press conferences, high teas, marches, is to keep up the momentum going, and also to put government in a very tight spot on this issue.
10: Definitely. Pressure from several ends at this given point undoubtedly is building up. And one cannot deny a lot of what has in fact been seen on the ground itself. But again, to an extent, there are also allegations and counter-allegations that will keep coming in that needs to be investigated into extensively. Because some of these, like previously itself, are very serious claims that have come in with regards to how police brutality has been alleged, or at least the accounts that have been given by some of these people about how the police handled them. So yes, we will continue to keep covering this story for you as we have been. But for now, we are slipping into a short break. Do stay tuned as we come back on the other side of the break with more news and updates. Thank you for watching.

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: BU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: ए यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: विद द वेट ऑफ द बुलडोजर द जेवीसी वर्किंग इट्स वे, ये एक बड़ा संकेत है कि कानून पे इतना भरोसा नहीं रहा है, लोग अपनी तरफ से ही एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और आप देखिए निहंग है, चाहे हम युवक की बात करें वो है, और ये आपकी जो लगते हैं और आस पास की जो एरिया है वो भी आप ये देखिए धुआं किस तरह से ऊपर उठता हुआ, और यही धुआं है, यही आग है जो कि कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगा। यहाँ पे बात आ रही है क्या इंसाफ मिल पाएगा परविंदर झोटा को, जिन्होंने ये पूरा मुद्दा पिछले 3 सालों से उठाया था। वहां पे हम लगातार बता रहे हैं किस तरह से कानून व्यवस्था को बनाने की कोशिश पंजाब पुलिस की तरफ से, लेकिन यहाँ पे लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा वो सड़कों पे फूटा है। एक जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी ओर इस तरह से की गई बुलडोजर एक्शन के बाद और आग जरी भी की गई, तो यहाँ पे लोगों ने संकेत दे दिया है कि कोई गलत काम जरूर हुआ है, और खासतौर पे वो आदमी जिसने मुद्दा उठाया उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब वहीं पे बात आ रही है कि किस तरह से वो चाह रहे हैं कि जो सीबीआई प्रोब की जाए या फिर कोई बड़ा पुलिस एक्शन किया जाए। आप ये देखिए अब अतिरिक्त पुलिस आती हुई और उस बीच में बड़ा एक्शन, ये देखिए दुकान के अंदर भी आपको आग नजर आएगी। यहाँ पे आस पड़ोस के दुकान वाले हैं, उन्होंने भी माना है कि एक्शन सही हो रहा है, अगर किसी ने गलत किया है तो ध्वस्त किया जाना चाहिए। लेकिन यहीं पे एक बड़ा संकेत है, एक बड़ा संकेत है कि ड्रग्स किस तरह से खुले हम दिखे।
1: आसमान देता तू नहीं देता, आरोपी दुकानदार पिस्तौल रखने लग गए, क्यों रखते रहे लखन आसमान बेच दे पिछो पिस्तौल की वीडियो बनाया पिस्तौल कड़ी खड़ा ही नशा बेचता सी भगवंत मान सिंह मार मार हिट च मार यार अश्वनी कोई गल अही करा गे अही करा गे अही चोर वे बदमाशी मार गया मार गया
2: बाहर आके गैंगस्टर कतल कर जाते हैं, तो उन्होंने पुलिस जी है अरेस्ट करूगी जल्दी, उन्होंने कितिया हुई गलतियां सजावा देगी। असी पंजाब का माहौल खराब नहीं होगा दवांगे, जेड़ा भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा वो जल्दी सलाखा देगा।
3: जे कल तक वो कल्प्रिट ना ना फड़े, क्योंकि तुहाडे सामने वो बंदा भज्जिया, तुहाडी पुलिस तमाशा देखती कि तुहाडा पुलिस जेड़ा तंत्र है वो खुद एक्सट्रॉशन दे विच मैनू एक पुलिस अफसर ने दसिया, मैनू कहिंदे भी हालात यह बन गए भी जे किसी नूं गैंगस्टर का फोन आउंदा ना वो पता की कहिंदा है, वो कहिंदे आ कि तुहाडा समझौता करा दिंदे असीं गैंगस्टर नाल, पुलिस दे हालात यह हो गए।
4: भगवंत मान साहब ये कहते सी कि ये नशा असी 1.5 महीने दे विच खत्म कर देने, और इस नशा खत्म करने दे वास्ते बड़िया मुहिमां चलाईयां गईयां विखावे दे वास्ते। एक ऐसी मुहिम जिहड़ा नां युद्ध नशा विरुद्ध सी, जिहड़ा विखावा तां कीता और करोड़ां रुपया लोगों का खर्च किया, लेकिन मैं समझदा कि एदू महाड़ी मुहिम ते जान बुझ के लोगों नूं जिहड़ा बेवकूफ बनाया पंजाब सरकार ने, कुछ हो नहीं सकता।
5: अज किस लेवल ते नशे दे जिहड़ा सेवन हो रहा, किस लेवल ते नशे दी तस्करी हो रही है, किवें अज भी कैमिस्ट दीआं दुकानां तों नशे जिहड़े आ ओह लोकां नूं मिल रहे, इस सारे एपीसोड ने ओहदी पोल जिहड़ी आ ओह खोल के रख दित्ती आ। मैं सरकार नूं कहना चाहुंदा कि होर किन्ना नुकसान तुसीं पंजाब दा कर, जे नहीं परफॉर्म कर सकते छड के पासे होवो, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
6: So viewers, meanwhile, Parvinder's father has blamed Aam Aadmi Party for his son's murder. Listen in to what he had to say.
1: ਤੂੰ ਕਾ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਵਿਕਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਭਾਸੀ ਛੱਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਰੋਡ ਬਰੇਟਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਰੋਡ ਬਰੇਟਾ, ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਡ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਨਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਝੋਟੇ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
6: On that note, viewers, we're now taking you to more breaking news that's coming in. We will keep a track of the previous story. But right now, we're learning cops probing AI, artificial intelligence posts on Delhi protest. Now, this is another angle that's coming to light now, wherein there's a crackdown on AI-generated reporters in the stir. Cops have come out to say that AI-generated reporters spreading fake news at this point, probe on what happened versus what was portrayed being completely different because of AI-generated content. And now the probe on, that is, on this entire difference that's been marked out by the Delhi police is currently being made and it's being launched. Now, protesters make their way into the CJP protest 2.0. Police is investigating the use of AI-generated reporters being portrayed as ground reporters to circulate misleading information. So, yeah, well, there is, at this given point, several angles that are coming in with regards to this entire protest that's been underway and how it's being investigated. Several allegations coming in from both the protesters as well as the cops' side. Let's, in fact, bring in more clarity into what we're learning here with Arvind Ojha joining us with more details. Arvind, a very good afternoon to you. Ye jo AI content ki baat ho rahi hai, hame thoda details bataiye ki ye kis tarike ki AI content hai. कुछ विजुअल्स जरूर हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा रहे हैं, पर किस हद तक इसका इस्तेमाल हुआ है ये दिखाने के लिए कि ग्राउंड का सिचुएशन क्या है, जबकि वो एक्चुअल में एआई जेनरेटेड था, उसके बारे में बताइए।
7: देखिए, दिल्ली पुलिस को इस तरह की कई शिकायतें मिली हैं कि कुछ जो पोर्टल हैं, कुछ वेबसाइट हैं, वो एआई जनरेटेड रिपोर्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि वो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं। दिल्ली पुलिस को ये भी शिकायत मिली है कि इस तरह के जो वेबसाइट हैं वो इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और जो फेक न्यूज है वो फैला रहे हैं। इस पर दिल्ली पुलिस ने इंडिया टुडे को बताया है कि इस पर एक शिकायत मिली है जिस पर जांच की जा रही है। जांच ये भी की जा रही है कि जो वेबसाइट है जो एआई जनरेटेड रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका आईपी एड्रेस कहाँ का है, किस देश से वो ऑपरेट हो रहे हैं, तो इसकी जांच दिल्ली पुलिस की इप्सो यूनिट की टीम कर रही है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि कई सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की गई है जो फेक न्यूज, भड़काऊ कॉन्टेंट, फेक वीडियोस फैला रहे हैं। लगातार दिल्ली पुलिस की टीम, पीआईबी की टीम उनका फैक्ट चेक भी कर रही है और साथ ही साथ इंडिया टुडे की टीम ने, मैंने आपसे कुछ देर पहले जो इप्सो यूनिट के एडिशनल पुलिस कमिश्नर है संजय भाटिया, उनसे बातचीत की, उन्होंने इंडिया टुडे को बताया है कि कई ऐसे सोशल मीडिया हैंडल है जब उनकी जाँच की गई जो भड़काऊ कॉन्टेंट लगातार पोस्ट कर रहे थे, तो उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी जिनका आईपी एड्रेस पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है और उसको लेकर उसको डाउन करने के लिए भी मेल लिखा गया। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी रजिस्टर्ड किया है।
6: जी अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। व्यूअर्स, वी हैव सम मोर न्यूज कमिंग इन, अनदर एस्पेक्ट दैट्स कमिंग टू लाइट एट दिस गिवन पॉइंट। लेट्स क्विकली टेक अ लुक एज़ टू व्हाट मोर आर वी लर्निंग। It's a news break from India today that's now been confirmed. It's a big Pakistan toolkit busted in Delhi protest. Pak plot to incite violence with fake news. Pakistan fake news plot to spread unrest in Delhi. It's provocative posts and videos regarding the Delhi protests that are being shared from Pakistani social media handles. The Delhi police has registered an FIR. Sanjay Bhatia, additional CP of the Delhi Police's IFSO unit, which is what Arvind was mentioning just a little while back, revealed this while speaking to India Today itself. In fact, before we proceed with more details with Arvind itself, let's quickly listen into what the police officer has had to say with regards to raising concerns about how there are social media handles based in Pakistan that has been working to also spread unrest, further chaos into an already charged up situation in India, in the heart of the national capital. Take a look.
8: कुछ पाकिस्तानी हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह का फेक न्यूज फैलाया गया कि दिल्ली पुलिस ने ओपन फायरिंग कर दी, राहुल गांधी घायल हो गए, पाकिस्तानी लिंक का भी खुलासा हुआ है आपकी जांच में?
9: हमने कुछ एफआईआर दर्ज की हैं और उसमें अभी मैं आपको संख्या तो नहीं बता पाऊंगा, पर कुछ ऐसे हैंडल्स हैं जिनकी आईपी इंडिकेट करती है कि वो पाकिस्तान से क्रिएट किए हुए हैंडल्स हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। वो हमने पाया कि उन हैंडल्स द्वारा खासकर बहुत ही मिस्चीवियस तरह के पोस्ट डाले जा रहे हैं जो फैक्ट्स पर बिल्कुल आधारित नहीं हैं, सरासर गलत हैं, झूठे हैं, और उन पोस्ट से पब्लिक ऑर्डर जो है खराब होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे पोस्ट पे हमने टेक डाउन का जो रिक्वेस्ट है वो भी की हुई है, हटाए भी हैं और इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं।
6: Very concerning allegations, viewers, that we are in fact bringing to you at this given point. Let me take this to Arvind Ojha himself. Arvind, aap abhi jo police officer hai IFSO unit ke, aapne unse baat ki, unhone bhi bola hai ki aise kai handles hai jo Pakistan mein operate kiye ja rahe hain, jo kyunki social media ek aisi jagah hai jahan pe content, jahan jis bhi jagah se ho aap is duniya mein baithe ho, aap wahan se aap usko डाल सकते हैं, तो ऐसे बहुत अब आजकल सोशल मीडिया में ऐसा भरा पड़ा हुआ है कंटेंट अबाउट दिल्ली में कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने कॉशन दिया है कि हाँ ये पाकिस्तानी हैंडल्स ये सारे कंटेंट प्रोपगेट कर रहे हैं, इसको स्प्रेड कर रहे हैं, फेक नैरेटिव्स ला रहे हैं, इसके बारे में और क्या जानकारी है?
7: देखिए, एक तो जो पाकिस्तानी हैंडल से जो वीडियो शेयर किया गया वो काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। उससे पोस्ट किया गया कल और आज भी, अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसका फैक्ट चेक भी किया है, जिसमें ये बताया गया, जो मिस्चीप पोस्ट था जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस की टीम घुस गई है, उनके घर पर फायरिंग हो रही है और राहुल गांधी घायल हो गए, वो पाकिस्तानी हैंडल से एक 2019 का एक वीडियो पोस्ट किया गया, पुराना वीडियो, और उसमें ये कंटेंट डाला गया, वो भी पाकिस्तान से, वो हैंडल उसका आईपी एड्रेस पाकिस्तान का निकला है और अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने उसका फैक्ट चेक भी किया है। और आपने सुना होगा जो एडिशनल सीपी हैं दिल्ली पुलिस की इप्सो, जो साइबर सेल की यूनिट है, उनके एडिशनल कमिश्नर संजय भाटिया ने इंडिया टुडे को ये बताया है कि कई जो पाकिस्तानी हैंडल है वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, जो वीडियोस फेक डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश है। कल इंडिया टुडे ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तानी हैंडल है वो जिस तरह के वीडियो डाल रहे हैं वो वाकई बहुत ज्यादा भड़काने वाली है और उसको कई लोग फॉलो भी करते हैं, इसलिए बताना जरूरी है कि दिल्ली का माहौल खराब ना हो। दिल्ली पुलिस की भी उस पर नजर बनी हुई है, उसके अलावा मल्टीपल एजेंसियों की नजर इस पर बनी हुई है। तो इंडिया टुडे की जो खबर थी उस पर खुद अब दिल्ली पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने मुहर लगाई है, उनका कहना इस तरह के मल्टीपल अकाउंट है, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR भी रजिस्टर्ड किया है।
6: जी जी अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज a certain news break that we had only brought to you, and this is concerning because these are content that only pushes a situation which is already volatile, which is already vulnerable, to another extent. It brings in more tensions at this given point, charges up an already heated up atmosphere, and that is what has now been flagged by the police's IFSO unit, and we're keeping a track of all of these aspects that are coming to the forefront with regards to the Delhi police, the Delhi protests at this given point that's being probed into. But more news coming in. Let's quickly take a look. Now, there are petitions that's been filed by 13 opposition leaders, which includes the leader of the opposition of the lower house of the parliament, Rahul Gandhi himself, regarding the functioning of the election commission. And that may now be heard, that petition, the plea that might be heard on October 26th is what we are learning. Currently, it's a computer-generated date of October 26th that's visible on the Supreme Court's website. Whether that is the date that the court will finally be agreeing to and proceeding with or not, that's a confirmation we are still awaiting. However, the exact date, as we mentioned, shall be only clear once it's formally listed. Right now, it's a digital, it's a website, it's a digitally created date that automatically gets allotted on the website when there are cases that get updated on that very list. So according to that update that we see on the Supreme Court website, the date that's been given is October 26th for the hearing. Now remember, This is a time anyway that we see. It's a festive time for the rest of the country, which is why, for the entirety of the country, which is why Rahul Gandhi and all of the opposition leaders came out to say, we're going to put everything on pause till Dussehra, and then we'll proceed and continue with following our strategy to oppose and demand the Chief Election Commissioner's resignation. Anisha Mathur joining me on the broadcast with more details on this. Anisha, very good afternoon to you. What exactly are you learning about the date that will be finally allotted for this very case hearing? Because October 26th is the digitally allotted date that's been given to the hearing of the case.
10: Well, clearly now we're picking this up from the Supreme Court website itself. Remember on Monday when the opposition leaders had gone in full force with a huge number of supporters to the Supreme Court to file this petition, then questions being asked about when it would be heard. At the same time, we also must remember that the similar issues regarding the working of the Election Commission, regarding allegations against CEC Gyanesh Kumar for taking unilateral decisions, regarding the allegations that Form 6 was changed without due process, and the question of how the ERO net and the ECIN net work and how the EROs are given power to readmit persons onto the voter list. All of those questions, there was already a petition pending in the Supreme Court on this matter in which notice had been issued on the 5th of October. And that petition, remember, is already scheduled for hearing on the 27th of October. The Supreme Court had issued notice to the EC as well as the individual ECs and the CEC to respond and submit file notings of how exactly decisions have been taken, whether the Election Commission is acting according to the rules or not. So whether the India Block petition is going to be taken up with that already existing
6: petition. Right, Anisha. Right. Thank you for bringing us those details. Viewers, we're quickly shifting our focus to a press conference now that's being held by the BJP's Punjab Unit Chief. Listen into what he has to say.
11: Pichle mahine bhi bola, is mahine bhi bola. कि भारत से नशे को बिल्कुल खत्म कर देंगे लेकिन आज मैं पंजाब की बात करने आया हूं आपके सामने आपका धन्यवाद आप हमारे पास आए नशा गैंगस्टरवाद लॉ एंड ऑर्डर फरौतियां कर्जा माली हालत और इस वेल पंजाब के एक नहीं मुद्दे पे मुद्दा है लेकिन सबसे मुद्दा बड़ा है वो नशे का है जैसे मैंने अभी बोलकर आया हूं कि कल ही आपके सामने है कि परमिंदर सिंह झोटा को जो ड्रग के खिलाफ बोलता था उसको गोली मार दी शरेआम उस केमिस्ट दुकान से जहां से नशा बिकता था वो वहां खड़ा था उसने किसी को पकड़ा नशा लेते हुए लेकिन इतने हौसले बुलंद हैं कि लोगों के कि शरेआम उसको गोलियां मार दी कल के लिए आम आदमी इसके लिए कौन जिम्मेवार है आम आदमी पार्टी की सरकार इसके हत्या के फोन के बाद उसके पिता ने जो कहा है वो उससे भी बढ़कर है कि इसके लिए हम जो लोकल एमएलए है उसकी सह पे ये हो रहा है तो मैंने तुरंत अपने माननीय गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखा और हमें पंजाब की सरकार पे पंजाब की पुलिस पे पंजाब के किसी पे कोई भरोसा नहीं है कि कुछ नहीं होता इसलिए हमने बोला कि इस ये सारी जो केस हुआ है इसकी इंक्वायरी सीबीआई को दी जाए गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखकर सीबीआई की मांग की है आज देखो आज हम सारे पंजाब में जिले जिले में इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा पंजाब में क्या हो गया कि एकदम बिल्कुल कानून की व्यवस्था तहस नहस हुई पड़ी है आज ही अभी आपने सुना होगा सुबह सुबह ही कि पंजाब में पुलिस कर्मचारी जो पंजाब का पुलिस कर्मचारी है उसे 15 किलो हिरण समेत बीएसएफ के नौजवानों ने पकड़ा बीआईपी के काफिले में उसकी ड्यूटी थी को पंजाब के पुलिस के कर्मचारी ही नशा बकवा रहे हैं वो नशे के साथ 15 किलो हीरोइन से पकड़ा गया ये इसके लिए कौन जिम्मेवारी है जो हमारा मुख्यमंत्री है पंजाब का वो गृह मंत्री भी है तो मैं तो समझता हूँ कि जब हर रोज ये नशे में इतनी मौतें हो रही हैं इतना कमजोर हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया गैंगस्टरवाद हो गया इसके लिए मुख्यमंत्री को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सरकार में बने रहने का और तुरंत उसका इस्तीफा मांग रहे हैं नशे के रोकने की बजाय आज पंजाब में क्या हो रहा है कि नशा तो रोक नहीं पाए लेकिन लोगों की आवाज़ बंद कर रहे हैं नशा बंद नहीं हो रहा लोगों की आवाज़ बंद हो रही है आम आदमी पार्टी में कोई भी इस दफा पंजाब में सुरक्षित नहीं है परमिंदर सिंह झोटे का भी मैंने आपको बताया है इसके साथ ही आप देखो कि कल की बात ही है, अमृतसर में जैस बैंक के एक मैनेजर को गोलियां मार दी। आज सुबह मोहाली में एनकाउंटर में एक घर में गोलियां चला दी। सुबह सुबह जब भी कोई आप उठते हैं तो आपको गोलियों की बात आती है कि इसको इस गोली से मार दिया। हर रोज पंजाब में बुरा हाल है, इतने बुरे हाल चल रहे हैं पंजाब के मैं बता नहीं सकता। 2026 में जो ये साल चल रहा है, आज तक 6 पुलिसचारियों को गोलियां मार के मार दिया गया। जब पुलिस जो लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, जब पुलिसचारी ही सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो और सुरक्षित क्या होगा। अकेले सितंबर की बात नहीं है, अक्टूबर के महीने में मशहूर लोगों के कत्ल हुए, जिसके जो गैंगस्टरवाद जो है वो जिम्मेवारी लेता है। 18 सितंबर को अमृतसर में पुलिस मुलाजम ASI हरजीत सिंह को गोलियां मार के मार दिया गया। 26 सितंबर को तरन तारण में सरपंच के पति नवदीप सिंह का गोलियां मारकर कत्ल किया गया। नशे के खिलाफ आज जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद कर दी जाती है, उसको गोलियां मार दी जाती है। 3 अक्टूबर को अमृतसर में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर मैड संधु का गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। 11 अक्टूबर को तरन तारण में एनकाउंटर इंटेलिजेंस के ASI इकबाल सिंह का कत्ल हुआ। 13 अक्टूबर यानी कल मानसा में अभी बोलकर रहा हूं परविंदर झोटे का हुआ। इसके बाद हालत ऐसे है कि पंजाब में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज ही नहीं है, लोग घर से निकलते हुए डरते हैं। आम आदमी पार्टी आज राज में कलाकारों को, खिलाड़ियों को, पुलिस कर्मचारियों को, इन्फ्लुएंसर को और सामाजिक कार्यकर्ताओं के समेत किसी को लोगों के कत्ल हो चुके हैं। और इसमें से देखो गायक मूसेवाले का आपको मालूम है, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई। कबड्डी खिलाड़ी जो संदीप नंगल है, मशहूर कबड्डी का खिलाड़ी था संदीप नंगल अंबिया, उसका हत्या हुई। कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की हत्या हुई। खिलाड़ी जो खेल प्रमोट करने वाला राणा बलाचौरिया था, उसका कत्ल हुआ। सुखबीर सिंह बादल पे अटैक हुआ, हमारे वरिष्ठ अधिकार, हमारे एक बहुत नेता है मनंजर कालिया जी, उसके घर पे ग्रेनेड फेंका गया। पुलिस के थाने तक कोई सुरक्षित नहीं है। मोहाली में देखो आज थाने पे ही बम फेंके जा रहे हैं। मोहाली में तरन तारण में RPG के हमले हुए, अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, थानों पर चौकियों पर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, जिससे हालत पूरी तरह निरंतर बाहर से हो रही है। आज पंजाब में रहने के लिए लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है, लोगों ने अपने घर बेचने तक शुरू कर दिए, बाहर पोस्टर लगा दिए कि हमारा घर बकाऊ है। आप देखो कि घर किस मुश्किल से बेचता है। फरीदकोट में जा रहा था, मैंने देखा कि कितने सैकड़ों की तरह लोगों ने अपने घर के बाहर लिख कर लिया है कि मेरा मकान बकाऊ है, क्योंकि उसको डर है। मैंने पूछा अपने जो हमारे वहाँ पे प्रधान थे कि इतने लोग घर क्यों बेच रहे हैं, वो बोलते हैं कि सर ये लोग इसलिए बेच रहे हैं कि यहाँ नशा बिकता है, वो कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को नशे की लत लगे। आम आदमी पार्टी सरकार को बर्बाद कर दिया। इस पंजाब जो इतना बड़ा नंबर एक सूबा होता था, आज 22वें नंबर पे चला गया। भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको मैं कहता हूँ कि ऐसे हालात जो जंगल जैसा राज है, आम आदमी पार्टी ने जो तहस नहस कर दिया जो कानून व्यवस्था है, उनको एक मिनट भी अपनी इस मुख्यमंत्री पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट का लोग, मैं ये कहना चाहते हो या तो मुख्यमंत्री साहब खुद परे हो जाए आपका इस्तीफा देकर, नहीं तो पंजाब के लोग, मैं भाई आपको बताना चाहता हूँ कि लोग सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट की सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए फिर हम इनको गाँव में घुसने नहीं देंगे।
6: On that note, viewers, we were tracking what the BJP chief of the Punjab unit had to say with regards to the entire incident that's come in, the murder of Parvinder Jota, which we are following. In the recent updates, we've seen the killer, that person's house has in fact been demolished, and there's vandalism, arson, all of that that's taking place in that neighborhood itself. So we'll leave it at that for now, but we're slipping into a short break. Do stay tuned as we come back with more news and updates on the other side.

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: moment in time. Arvind Oja is now joining in to give us more details on the same. Arvind, now give us an understanding. Delhi cops are issuing this notice to a coercion to join the probe. Is he going to be appearing there? What exactly are you understanding at this point in time?
1: देखिए ये जो जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर है बिमोल आइको जाम उनको दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस भेजा है. ये साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन है वसंत कुंज नॉर्थ, वहाँ के पुलिस स्टेशन ने ये नोटिस दिया है और इनको कहा है कि आप नोटिस को फॉलो करें और जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें. इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी, जिस तरह से कई स्टूडेंट ने इनके ऊपर आरोप लगाया था उसके बाद फिर इन पर एफआईआर दर्ज की गई है. और अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि आप जल्द से जल्द जाँच में शामिल हों और इसलिए पुलिस स्टेशन से इनको बीएनएफ के अलग अलग सेक्शन में नोटिस जारी किया गया है और प्रोफेसर को कहा गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन में आइए और अपना जो पक्ष है वो रखिए. जी
0: एब्सोल्युटली. अरविंद ये भी बताइए कि बहुत सारे लगातार बीजेपी एमपीज जो हैं प्रेसिडेंट मुर्मू से भी मिले थे और लगातार उनसे एक्शंस अगेंस्ट कांग्रेस एमपी मांग रहे थे. अब फाइनली दिल्ली पुलिस का ये जो नोटिस आया है इसका मतलब यही है कि इन्वेस्टिगेशन अब चालू हो जाएगा और अब इसके आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी?
1: देखिए मुश्किल तो बिल्कुल बढ़ेगी क्योंकि देखिए इन पर एलिगेशन लगा था उसके बाद जो इस पर काफी ज्यादा राजनीति भी हुई. जो बीजेपी की महिला सांसद हैं वो कल प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गई थी और इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर भी रजिस्टर किया इनके खिलाफ. और उसके बाद चूंकि एफआईआर के बाद जो प्रोसेस लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि जो अक्यूज है उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसमें शामिल कराया जाता है, उससे उसका पक्ष जानने की कोशिश की जाती है, साथ ही साथ जो आरोप उस पर लगे हैं उसके बारे में भी उसे जानकारी दी जाती है. तो जिस तरह के सेक्शन है बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में जो बिमोल आइको जाम है इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. तो फिलहाल जो वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन है उसने नोटिस भेजा इनके घर पर पूछताछ में शामिल आने.
0: तो अरविंद अभी तक कोयजम जी की तरफ से क्या क्या अपनी तरफ से बचाव के लिए कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं जिसके ऊपर वो इस इन्वेस्टिगेशन में भी अपना पक्ष रख सकते हैं? किस तरीके के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं? लगातार जो चार्जेस उनके अगेंस्ट लेवल किए जा रहे हैं.
1: जी देखिए ऐसे मामलों में हर कोई अपने आप को निर्दोष ही बताता है लेकिन अगर पब्लिक फोरम पर वो कुछ भी बयान देते हैं दिल्ली पुलिस या कोई भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसको नहीं मानती है. जहां जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है वहां पर ही जाकर पुलिस के सामने स्टेटमेंट देना होता है क्योंकि फिर जो पुलिस के सामने एविडेंस होते हैं या फिर जिस भी विक्टिम ने जो एलिगेशन लगाया उस पर उनसे कन्फ्रंट किया जाता है. तो विमोल ने जो भी बयान पब्लिक फोरम पर दिया होगा वो कोई मायने नहीं रखता है. जब दिल्ली पुलिस के सामने पहुंचेंगे दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ करेगी तभी पूरे मामले का खुलासा होगा और सच्चाई सामने आएगी.
0: Thank you, Arvind, for getting us all of those details at this point in time. Viewers, we are given to understand that Delhi cops have already issued the notice to Bimal Akwajam to now present his own side of the story and, of course, join as far as the investigation is concerned. Now, given to understand as to how he will be approaching this situation as well. We'll continue to track this news story going forward from here, but it's time now to get you all the business updates from the stock markets in a bit.
2: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
3: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight.
4: Well said, well said, well said.
3: SEBI and NSC advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSC.
5: Presented by National Stock Exchange.
3: C.
5: Presented by National Stock Exchange.
6: Co-powered by Ujjivan.

0: तुम सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Viewers, right at the top, we have breaking news that's coming in. This is with regards to Abhijit Dibke, the CJP founder who had, remember, flown back to Maharashtra to his hometown for the final rites of his grandmother. He's back in Delhi amid arrests that have taken place of the co-conveners of CJP. Now, the minute he landed at the Delhi airport, what we are learning about is that he has been heckled. He's been heckled by a certain person, certain group of people right there at the Delhi airport, where some of them came up and asked him, why are you destroying the country? Now, there's still no information about who these people exactly are. But yes, of course, we have been covering how the entire atmosphere, how the entire entirety of the situation that's developing here in the national capital has been excessively charged up and heated at this given point. Because following up on all of what's happening, since morning, we've seen the co-conveners, Saurav Das, Ashutosh Ranka, both of them would been booked along with the spokesperson of their party as well. At this given point, that was Ajinkya Shinde, all three booked, but two of them had been, in fact, sent to Tihar jail, while Shinde was released on a surety, on a peace bond, that is. Now, amid all of these developments, Abhijit Dibke has returned to Delhi. He has come back to, in fact, monitor the situation right from here, because the protests, all of the heated up situation that happened right here in the national capital over the last 3 days, ever since October 10th. Remember earlier when three of them, Abhijit Dibke, Saurav Das, Ashutosh Ranka, all of them had come in from Mumbai on October 10th. They were, in fact, taken into custody, into detention rather, by the police officers right from the aircraft. Now, we have Arvind Oja with more details as to what exactly do we know about these people who heckled Abhijit Dibke at the airport. Arvind, do help us understand. Aap hame bataiye ki ye kaun the log jinke bare mein hamare paas zyada information filhal nahi aayi hai. Par kya exactly inke beech mein kaha suni hui Abhijit Dibke aur ye jo log the, aur kahan se hai, kuch pata chala hai inke bare mein, koi police report aayi hai?
1: देखिए, पहले तो ये बता दूं कि कोई हैकल्ड नहीं है. जो अभिजीत दीपके है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे और पुलिस वहां पर मौजूद थी उनकी सिक्योरिटी के लिए. नागपुर से वो आए थे. उसी दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ लोगों ने अभिजीत के खिलाफ नारेबाजी की, अभिजीत को भला बुरा कहा और ये भी कहा कि तुम देश बर्बाद कर रहे हो. और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है. ये कौन लोग थे इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है. कुछ लोगों का कहना है कि पैसेंजर थे, कुछ लोगों का अलग अलग, तो अलग अलग बयान आ रहे हैं. अब इस तरह के मामले में कोई दिल्ली पुलिस को शिकायत नहीं मिली है और मुझे लगता है कि कोई शिकायत मिलेगी भी नहीं. लेकिन जब अभिजीत दीपके दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया और जब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान उनके खिलाफ कुछ नारेबाजी हुई, जो वीडियो में देखा भी जा सकता है, जो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है. जो लोग दीप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे वो कौन लोग हैं उसके बारे में पुष्टि नहीं हो पाई अब तक. कुछ लोगों का कहना है कि वो पैसेंजर थे, लेकिन ये अलग अलग बयान आ रहे हैं. लेकिन ये जरूर है कि अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी थी, दिल्ली पुलिस के लोग थे जिन्होंने अभिजीत दीपके को कार में बिठाया और वहां से रवाना किया. इंटरेस्टिंग ये भी है कि जब लोग अभिजीत दीपके के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे तो अभिजीत दीपके ने उनको स्माइल करते हुए विक्ट्री साइन भी दिखाया. अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं,

0: जो लोग नारेबाजी कर रहे थे उनको रिप्लाई किया अजीत दिपके ने स्माइल करके और साथ ही विक्ट्री साइन भी दिखाया है। लेकिन वहां पर पुलिस मौजूद थी, तुरंत अजीत दिपके को कार में बिठाया गया और उसके बाद उनको वहां से ले जाया गया।
1: जी अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे। व्यूअर्स, दिस वीडियो दैट वी आर स्पीकिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट पैंड आउट व्हेन अभिजीत दिपके जस्ट एंटर्ड द एयरपोर्ट, टेक अ लुक एट what happened exactly, the exchange that took place between this certain person who's come out to ask these questions to Abhijit Deepke and his response to that.
2: ये गलत फ्रेंच है। अरे क्यों देश को खराब कर रहा भाई? क्यों देश को खराब कर रहा है? क्यों से देश को खराब कर रहा है?
3: चोर है, चोर है। अरे देश को खराब कर रहे
4: हैं। नहीं नहीं सर, बच्चों को परेशान करने में
2: है।
1: Now viewers, let's take you through the details of what's happened so far since morning. Cockroach Janata Party co-convener Saurav Das and Ashutosh Ranka, both of who have now been sent to a 5-day judicial custody to Tihar Jail. Now, why have they been sent to Tihar Jail? The reason that's been cited is because on October 12th, they had both come out to breach the barricades at Jantar Mantar, which had already, as per court order, by then been denotified as a protest site. So because of the same reason, because of breaching barricades there, they had in fact been detained from there by the police. In fact, Ajinkya Shinde was also with them. But later on, Ajinkya Shinde has been let go of. But the other two co-conveners have now, in fact, been sent to Tihar Jail. Now, let's take you through a little bit of the details of what are the charges and what exactly is the bond that Shinde has signed. Shinde has been released after furnishing a peace bond of rupees 5,000. And as a part of his bail condition, Shinde has, in fact, been directed to maintain peace for the next 6 months and refrain from participating in any illegal or violent protests. Now, CJP's legal team is moving Delhi's Patiala House Court, that is, to seek bail for Saurav Das and Ashutosh Ranka. And India Today has meanwhile gotten the inside scoop that Das and Ranka have been lodged separately in Tihar Jail in two different cells. While Das has been lodged in jail number 2, Ranka has been lodged in jail number 4. CJP founder Abhijit Dipke, of course, has hit out and made fierce attacks at the government, claiming that the government is using cowardly tactics to crush dissent. Because remember, Saurav Das, Ashutosh Ranka, Ajinkya Shinde were booked for entering the Jantar Mantar in the first place, and the violation was already done of a previous peace bond that Das and Ranka both had signed on October 11th after they were let go of detention. Now, let's quickly first take you through all of the responses that have come in so far into the story before we proceed with more details.
5: उन्हें पता था कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है, लेकिन वो फिर भी वहां गए, तिरंगा लेकर गए और तिरंगा लहराया। नरेंद्र मोदी के अंडर आज इस देश में तिरंगा लहराना भी वॉयलेशन ऑफ लॉ हो चुका है। मैं नरेंद्र मोदी से बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर दम है तो इमरजेंसी को ऑफिशियली डिक्लेयर करो। ये कायरों की तरह, कावर्ड्स की तरह पुलिस के पीछे छुपना बंद करो। लगा दीजिए ऑफिशियल इमरजेंसी और कह दीजिए इस देश में डिसेंट नहीं चलेगा, कह दीजिए इस देश में प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, कह दीजिए कि इस देश में सिर्फ अब हर हर मोदी, घर घर मोदी चलेगा। क्योंकि ना आप तिरंगे की इज्जत करते हैं, ना आप इस देश के लोगों की इज्जत करते हैं, ना आप संविधान की इज्जत करते हैं। तो डिक्लेयर कर दीजिए इमरजेंसी अगर आप में हिम्मत है तो।
6: आपको पता होगा आज आशुतोष, सौरभ दास और मैं और हमारे साथ सीजीपी के वॉलंटियर्स हम जंतर मंतर की ओर गए थे और हमने बस भारत का झंडा लहराया और भारत माता की जय बोला। तो इसके लिए इस मोदी शाह के तानाशाही सरकार ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। ये तानाशाही सरकार का अंत होके रहेगा। आज आशुतोष का बर्थडे था, उसके बर्थडे के दिन उन्होंने भारत माता की जय और तिरंगा का झंडा लहराने के लिए उनको जेल में भेज दिया है।
7: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है, इनका उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक किसी उनका कहना है कि पब्लिक बॉडी, पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेनेंट फाइलिंग द कंप्लेंट। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके और जिस केस के रेफरेंस में या जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज करते हुए, इसका मिसयूज करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी को भेज जेसी।

0: Because on that note, we're shifting our focus to a story that we've been tracking very focusedly and closely for the last couple of days, which is with regards to the Congress MP, Bimal Akhoyajam, who's now been served a notice. The Delhi police have summoned him for interrogation. Remember, this is with regards to the complaint that's come in from the JNU against this very professor at this given point. And what we do see is trouble mounting for the Congress MP. Cops summon MP in the JNU sex abuse case at this very point of time. We're speaking about Congress MP, senior Congress MP, Bimal Akhoyajam, who has now been served a notice. The notice has in fact been provided to him outside his old residence in the national capital itself. In fact, Arvind Ojha is joining me on the broadcast with more details on the same. Arvind, दिल्ली पुलिस की तरफ से बिमल अकोयजाम को नोटिस चली गई है अभी उनके उनको समन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल
1: देखिए ये जेएनयू के जो फॉर्मर प्रोफेसर हैं और कांग्रेस के एमपी हैं बिमल इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर्ड किया है और अब जो इंट्रोगेशन है वो गोइंग ऑन है और दिल्ली पुलिस इनके घर पर आज पहुंची थी नोटिस सर्व करने के लिए लेकिन ये घर पर नहीं मिले जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनके घर पर नोटिस चिपकाया है और इनको कल पूछताछ के लिए बुलाया है जिस तरह से इनके ऊपर 11 लड़कियों ने आरोप लगाया था उसके बाद ये मामला काफी पॉलिटिकल हो गया था उसके बाद जेएनयू प्रशासन ने एक्शन लिया उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड किया है डिफरेंट सेक्शंस में और उसके बाद अब इनको नोटिस सर्व करके कल बसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है ताकि जो आरोप लगे हैं उन पर ये अपनी सफाई दे साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस के पास एविडेंस है उससे जो जो सांसद हैं कांग्रेस के इनको कन्फ्रंट कराया जा सके इस मामले में कल आपको याद होगा कि जो बीजेपी की महिला सांसद है वो राष्ट्रपति भवन तक भी गई थी वहां एक्शन लेने की मांग की गई थी लेकिन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने अब इनको नोटिस सर्व करके पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है
0: जी बिल्कुल अरविंद हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वेल व्यूअर्स Let's take you through the updates, the developments. It is a high-profile case that we are speaking of with some very serious allegations that's come to light against the senior Congress MP, Bimal Akhoyajam. Now, this is how the JNU controversy, in fact, developed. There are sexual harassment claims that have been made by students at the JNU against Congress MP Bimal Akhoyajam. And this entire story has been snowballing with politics taking over as well. In an exclusive conversation, in fact, with India Today's Rajdeep Sardesai, Akhoyajam has denied the sex for marks allegations, challenged the JNU panel to prove the charges, and said that he would quit politics if found guilty. He's also accused the panel of insulting and torturing him. Meanwhile, Congress MP Shashi Tharoor has alleged that JNU action was unjust and alleged that Akhoyajam is being targeted because he's a Congress MP and emphasized that facts must first be established. But the BJP is also taking the matter to the highest office. 15 BJP women MPs led by D. Purandeshwari have submitted a memorandum to President Draupadi Murmu herself. Their demands include a referral to the Lok Sabha Ethics Panel, suspension pending inquiry, protection and privacy for the 11 women students, and swift, impartial legal proceedings. The BJP, meanwhile, is also questioning the Congress leadership's silence on the entire case at this very point of time. On that note, my colleague Rajdeep Sardesai spoke under fire to Congress MP Bimal Akhoyajam over the serious allegations levelled against him. Listen in.
2: Do you accept that this is a very serious charge? 11 female students from the Centre for Study of Social Systems filing sexual harassment complaints leading to your having to leave JNU or being dismissed and a police FIR. Do you concede that this is extremely grave, serious and that you have much to answer for?
3: No, I think I would say there has been an obscene spectacle that has been going on in the rest of the country in the name of these charges. That's my first response. I mean, and I'll tell you that you are saying 11 complainants. I have the record because you know that under POSAC, since I'm the respondent, I will have all the papers and others. Mm-hmm. There are 15 complainants, mm-hmm. including three boys. That's the first correction. Mm-hmm. A lot of lies and outlandish lies have been preached. and a very serious statutory institutions like ICC has been converted into a khap panchayat. And one of the classic examples is that you are still saying that 11 complainant. There are 15.
2: Whether there are 11 or 15... One minute. When sexual harassment charges take place, at the very least, you're a member of parliament. Do you think you should be stepping aside till such time as an inquiry is complete? If you're innocent, you went before a committee of JNU, they are the ones who held you guilty.
0: Viewers, at this given point, we're taking you to a big story that's developing. This is with regards to the Meerut Blue Drum murder case. Now, we do hear that the sentence has finally been pronounced, the verdict that we were all waiting for at this given point. The sentence has been given by the court, and it's a death sentence for both Muskan and Sahil, the accused duo in this very case. Remember, this is the murder case of the Merchant Navy officer who was, in fact, Muskan's husband itself, Saurabh Rajput. The case that had taken place in Meerut, in fact, Saurabh had come in. He was returning from London when this entire case had taken place last year. We had, in fact, seen almost 126 rounds of hearings that had taken place, post which in the month of September, finally, the court had been able to give conviction for both Muskan and Sahil. This was a case that had left the nation stunned and shocked. Not only was Saurabh Rajput at this given point murdered and mercilessly murdered, but his body parts were dismembered, his neck separated from his torso, his wrists cut off from his hand. There were several of these injuries, stab injuries to his heart, several parts of his body completely separated and stuffed in a blue drum. And when we speak of the blue drum, they didn't leave it there. They, in fact, filled the blue drum with cement to ensure that, in fact, nothing comes out easy in the investigation. That was their entire plan to escape the entirety of the murder scene. In fact, we're getting ground reports. Listen into what we're getting.
4: हत्या के बाद जिन होटलों में वो रुके थे जाकर के मनाली में कसौल में शिमला में वहां के मैनेजर का स्टेटमेंट था यानी ये जो गवाही थी ये डायरेक्ट गवाही थी जिन लोगों ने हत्या के बाद देखा था और दूसरी चीज जो मोबाइल फोन लगातार इस्तेमाल किया गया था उसको भी देखा गया कि किस तरीके से मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत के मोबाइल को हत्या के बाद अपने पास रखा ताकि वो पूरे परिवार को गुमराह कर सके. लगातार लोगों को ऐसा लगे कि सौरभ जो है अपनी पत्नी मुस्कान के साथ घूमने गया हुआ है लेकिन हकीकत में उसकी कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को डंप कर दिया गया था ड्रम में. अब इस पूरे मामले में जो साइंटिफिक एविडेंसेस थे क्योंकि जो नशा दिया गया था खाने में सब्जी में उस नशे को कहां से खरीदा गया था उसने भी आइडेंटिफाई किया मुस्कान को आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से ये कत्ल के पहले खरीदी थी. सीसीटीवी फुटेज कत्ल के पहले और बाद का कौन आया कौन गया ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी और डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे काम किया जिसके बाद आज ये दिन आया 30 सितंबर को दोषी ठहराया गया था और आखिरकार आज जो मेरठ कोर्ट है वही ठीक मौजूद है यहाँ पर अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है. सुबह हम पहुंचे थे बहुत महत्वपूर्ण था जब हम जेल पहुंचे थे गौरव तो वहां पर हमें ये पता लगा था कि मुस्कान से मिलने कोई नहीं आया था पिछले 1.5 साल में उसकी फैमिली में से कोई नहीं पहुंचा था जो जाए और मुस्कान से बातचीत करे. और यहां आने पे हमें कोर्ट में पता चला कि किस तरीके से मुस्कान के पेरेंट्स ने यहां पे लिख के दिया था कि अगर फांसी की सजा होती है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे हायर कोर्ट में नहीं जाएंगे. बहुत अच्छा लड़का था सौरभ राजपूत ये लिख करके दिया गया था जो स्टेटमेंट जो सजा सुनाने से पहले जो सभी से बातचीत की जाती है. आज सुबह भी दोनों करीब 10:30 बजे के आसपास दोनों जुड़े थे कोर्ट रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए.
0: So on that note, viewers, this, remember, a death sentence is always, in fact, given to somebody in the rarest of the rare cases. It's not usually the first. It's not the kind of punishment you usually see in cases, in particular crime cases also, for that matter, which just happens on an everyday basis. So there is a lot of hearings that's taken place. 126 hearings over 22 In fact, evidence, witness evidences that had been going, that they had to go through in the court of law. And finally, the conviction was given in the month of September, and a death sentence now that's been, in fact, given to the duo, the accused duo. Arvind Doja joining me on the broadcast. Arvind, इस पूरे केस में अगर हम इस केस की एविडेंस को देखें जो प्रोसिक्यूशन ने पेश की थी कोर्ट को, 13 मंथ लंबा ट्रायल चला था, उसके बाद कन्विक्शन हुआ था. इस केस में ऐसी क्या क्या ऐसे एविडेंसेस थे जिसके वजह से हम देखते हैं डेथ सेंटेंस दिया गया इन दुओं को, क्योंकि डेथ सेंटेंस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ पनिशमेंट दैट्स अवॉर्डेड टू समबडी.
5: बिल्कुल, और देखिए इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना, तभी इस मामले में डेथ पेनल्टी की जो सजा है वो सुनाई गई मुस्कान और साहिल शुक्ला को. जो बॉडी पार्ट्स हैं वो घर से मिले थे, बॉडी पार्ट्स का डीएनए कराया गया, वो मैच किया. उसके अलावा मोबाइल फोन जो सौरभ है वो इन अक्यूज के पास से मिला था, और डायरेक्ट एविडेंस कई थे. उसके अलावा साइंटिफिक एविडेंस थे, डीएनए का जो सैंपल है उसका मिलान हुआ था. सबसे पहले तो जो ये जो बॉडी मिली थी ब्लू ड्रम में, वो सौरभ की है नहीं है, इसके लिए डीएनए सैंपलिंग कराई गई थी, उससे पुष्टि हो गई थी. उसके बाद जो मुस्कान और साहिल के बीच मर्डर के पहले और मर्डर के बाद की जो बातचीत थी, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए चैट्स हो या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, उसको एविडेंस बनाया गया. उसके अलावा जहां से इन लोगों ने बॉडी काटने के लिए वेपन लिया था वहां पर पुलिस पहुंची थी, उसके एविडेंस वो कलेक्ट किए थे. उसके अलावा जो कन्फेशन था दोनों अक्यूज का, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने कराया गया था. तो दिल्ली जो यूपी पुलिस है उसके पास काफी एविडेंस थे, और उस एविडेंस के आधार पर ये सुनवाई चल रही थी, और अब इसमें मौत की सजा सुनाई गई है. बड़ी बात इसमें यह है कि सजा सुनाने से पहले जो मुस्कान के पेरेंट्स हैं उन्होंने कोर्ट को लिख कर दे दिया था कि अगर इनको फांसी की सजा मिलती है तो उसको अपोज नहीं करेंगे. हालांकि अभी मुस्कान और साहिल के पास ऑप्शन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन लोअर कोर्ट ने इस पूरे केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई है.
0: जी बिल्कुल, और अगर हम बात करें इन दोनों की भी, ऐसे सुनने में आया था कि जो जेल मॉनिटर करते हैं इनके व्यवहार में भी एक तरीके का डिफरेंस आ गया था कन्विक्शन के बाद. कन्विक्शन के पहले तक इनकी एक तरीके का बिहेवियर था जेल में ही जब थे, अरेस्ट हुए थे, पर जब से कोर्ट ने इनको कन्विक्शन ऑर्डर दिया था तब से दोनों काफ़ी नर्वस थे. उनको धीरे धीरे दिख रहा था कि केस पलट गई है और उन्हीं के खिलाफ अब जा रही है और बचने का कोई भी यहाँ पे उपाय नहीं है.
5: बिल्कुल, और देखिए शुरुआत से ही ये जो केस है वो यूपी पुलिस ने काफी दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब खुलासा करना शुरू किया तो ये केस को ओपन शक बना दिया था. एक एक करके एविडेंस जो वो कलेक्ट किए गए थे, और जैसा मैंने आपको बताया कि जो बॉडी पार्ट्स ब्लू ड्रम से मिले थे उसकी डीएनए सैंपलिंग कराई गई थी, जिससे ये पुष्टि हुई थी कि जो बॉडी पार्ट्स थे वो सौरभ राजपूत के थे. उसके अलावा दोनों को अकेले अकेले में बैठकर पूछताछ की गई थी जिसमें उन लोगों ने अपना गुनाह कबूला था. अरविंद,
0: आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस आएंगे. हिमांशु मिश्रा इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट. एंड हिमांशु, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. बहुत बड़ी खबर है ये जो हम ट्रैक कर रहे हैं फिलहाल. आपके पास कुछ लॉयर्स भी हैं आपके आसपास, अभी उनसे बात करके हमें ये बताइए कि ये केस जो 13 महीना लंबा जिसका ट्रायल चला है और उसके बाद फिलहाल फांसी का जो पनिशमेंट है वो सुनाया गया है, उसके बारे में और डिटेल्स अगर आप हमें बता सके तो.
6: अब जो भी ऐसे हत्याकांड होंगे उन लोगों के लिए यही फांसी की सजा होगी, क्योंकि उन लोगों को आगे डर लगेगा कि भाई जब उन लोगों को फांसी की सजा.
7: आपको लगता है कि इंसाफ मिला है सौरभ को?
6: जी हाँ, सौरभ को इंसाफ मिला है.
7: सौरभ, अच्छा आप सुबह कह रही थी कि फांसी की सजा
6: अगर ये लोग आगे जाएंगे तो हम भी जाएंगे, अगर इनको फांसी नहीं होती है तो हम आगे तक जाएंगे.
7: अभी कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पे आप
6: अभी अभी उन्होंने फांसी का ऐलान किया है, फांसी की डेट डिसाइड नहीं करी है. अगर फांसी जिस दिन हो जाएगी उस दिन हमको संतुष्टि.
7: ये बात तो सामने आ गई थी कि किस तरीके से सौरभ के जो मुस्कान के माता है उन्होंने लिख के दिया था कि अगर फांसी की सजा होती है तो आगे नहीं जाएंगे, और सौरभ अच्छा लड़का था.
6: वो किस वजह से बोल रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के मारे बोल रहे थे कि सौरभ बहुत अच्छा, अगर उनको उसका साथ देते और अपनी लड़की का साथ नहीं देते. वो
7: जिस तरीके से पिछला 1.5 साल बीता उसको आप कैसे देखती हैं जब ये कोर्ट का ये फैसला?
6: बहुत बहुत दुख भरा दिन निकले हैं, हर दिन हम रो रो के निकले हैं, हर दिन याद करते थे, हर चीज हमारे नजरों के सामने घूमती है। हमारी नजरों से तो खैर हमारा बच्चा जाने का ही नहीं, घर के एक एक कोने में बसा पड़ा है वो।
7: अच्छा, अब आप बताएं कि अब आप जिस तरीके से नीला ड्रामा एक कहें कि पूरे देश में एक सिंबल बन गया था, अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज तक जी? मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे?
6: हम तो यही देना संदेश चाहते भैया, किसी का भी बच्चे को मारो मत, नहीं रहना उनके साथ, अलग हो जा। अगर कोई लड़का नहीं चाहता लड़की को मार देता है तो वो भी अपने नई लड़की के साथ रहना तो वो भी अलग हो जाए। अगर ये ऐसा काम करेंगे तो उनको भी फांसी की ही सजा होगी।
7: आग्रह है सौरभ की माँ हमारे साथ ही, सौरभ राजपूत की माँ जिन्होंने ये बात कही। और अब हम बात करते हैं, और आप एक बात बताइए राहुल जी, तो सुबह हमसे आपकी हमारी बात हुई तो आपने फांसी की मांग की थी, अब आप क्या करेंगे?
8: हम संतुष्ट हैं न्यायालय से एकदम संतुष्ट हैं। बहुत सही फैसला आया है हमारे लिए, हम यही चाह रहे थे। 1.5 साल से जो हम चक्कर काट रहे थे इसी फैसले के लिए काट रहे थे।
7: 1.5 साल से आपका पूरा परिवार परेशान,
8: झेलिए इसी दिन के लिए झेली हमने कि हमारे को न्याय मिलेगा।
7: अब जो अगर हम बात करें तो साहिल एक और बच्ची है, नहीं है, अगर फांसी होती है तो क्या आपका परिवार उसे एक्सेप्ट करे?
8: वो साहिल के घर वाले करेंगे, क्योंकि साहिल ने आगे आके बोला था कि भाई मैं ये तुम चाचा बन गए हो जो उसके जेल बंदी थे, और उन्होंने बोलता मैं बाहर आने के बाद जो है तुम्हें दावत दूंगा। उसने खुले में बोला था कि मेरी बच्ची है, और ये बच्ची जो है अब साहिल के घर वाले हैं, मुस्कान के घर वाले
7: में कंडक्ट अच्छा है।
0: There is a bit of a disturbance in the connection there, but at the end of the day, one can understand. We just heard Saurabh's mother as well speak, relatives who are speaking up now. You know, at the end of the day, the loss of a life, the loss of a son can never, nothing in this world can ever fill that void for her. But yes, the family had sought justice, and to the extent that Muskan, who Saurabh was married to, Muskan's family themselves had come out to say that if she is found guilty, she should be given the highest order of punishment. We have Himanshu back with us. Himanshu, हाँ, आप बता रहे थे हमें, वकीलों से बात कर रहे थे, फैमिली से बात कर रहे थे, प्लीज बताइए और क्या जानकारी मिल रही है?
9: मैं एस के दीक्षित अधिवक्ता मेरठ बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ, और न्याय प्रक्रिया ने जो न्याय दिया है वो सही न्याय दिया है, और इससे मैसेज आएगा और लोगों में भी। इतना घिनौना अपराध पूरे भारतवर्ष में वर्ल्ड में सूचना गई है,
7: और इससे एक मैसेज जाएगा जो यहाँ पे आप देखे हो, एक गुस्सा था लोगों में। हमने देखा कि किस तरीके से लोग जब ये फैसला सुनाया गया तो भारत माता की जय ये नारा अंदर पूरा गूंज रहा था कोर्ट रूम के अंदर, कि किस तरीके से जैसे ही जज साहब ने कहा फांसी, क्योंकि लोग एक जैसे परसेप्शन था कि शायद उम्र कैद देंगे क्योंकि बच्चियों की बात है, लेकिन जैसे ही लोगों ने सुना मृत्यु दंड, साहिल शुक्ला और मुस्कान तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, पूरा कोर्ट जो खचाखच भरा हुआ था, लोग नारे लगाने लगे भारत माता की जय, इस तरीके से पूरा कोर्ट रूम गूंज उठा था।
0: जी हिमांशु, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद, और हम आपके पास आते रहेंगे और भी अपडेट्स के लिए। बट व्यूअर्स, दिस इज द स्टोरी दैट वी आर फॉलोइंग। रिमेंबर, दिस वाज अ मर्डर केस दैट हैड सरफेस्ड ऑन 24th of February लास्ट ईयर, अ केस एज वी सेड अर्लियर that had stunned the entire nation just by the sheer brutality and how gruesome a way it was in fact conducted. The details of it, as and when it came to the forefront, was just as gory. A particular woman, that is Mustan Rastogi, who had come out to, in fact, and along with her lover back then, whose name is Sahil Shukla, both of them had come out to, in fact, kill Saurabh Rajput, and then proceeded not in fact to be guilty of that crime, but they went out on a vacation. They toured Himachal for days on. And then it was Muskan who had first approached her family, come back and said and pleaded guilty to her family. She was the first one to have confessed to her family that this is the crime that she had ended up committing. And then post that, we'd seen the police had not only just registered a case, but had arrested the duo, post which there was a 13-month long trial. As many as 126 hearings had taken place. A detailed, entire detailed probe had been done to produce enough evidence. evidence which included all accounts, witness accounts, evidence that also included all of the purchases that were made, the knife, the drum, all of the equipments that were used by the duo, by that couple, Muskan and Sahil, all of that had been brought to the forefront. And then they proceeded to, in fact, how they proceeded to, in fact, commit this crime, that was brought in piece by piece. Here on your screens right now is an entire timeline of that very event. The crime that was committed to the very conviction that we are speaking of at this given point. And this is extremely disturbing. What we had seen even back then when the case had come to light, it had left all of us with a very gory taste, with a very troubled mindset about what exactly had happened here. And then now, months after, 14 months later, we do see justice being served to Saurabh Rajput, that Merchant Navy officer who had returned from London to this fate of his. We'll take you through a little bit in detail through this very timeline that we're presenting to you in front of our screens at this given point. It came out to be known as the Blue Drum murder case. The reason why the name Blue Drum? Because it was a blue drum that was used to store the body parts of the dead body parts of Saurabh Rajput. So what exactly was this entire scene? The Blue Drum murder case, from crime to conviction, 24th February 2025 is when this crime had taken place. Saurabh Rajput had just returned to Meerut from London, and post that, little did he know that he was going to return to this fate of his. 3rd March is when he had been murdered by this very duo. But post that, the body was dismembered. They didn't just throw out or discard the body. They dismembered it into pieces and stuffed it in a blue drum and filled the drum with cement post that to completely lock it and jam it. Then, over the next few days of that very month, 4th to 10th March, precisely speaking, Muskan and Sahil went out on a recreational trip. They went out on a vacation and toured across Himachal Pradesh. It was after that, when 17th March 2025, when Muskan allegedly came back to the family and confessed to her crimes. And this is what she had ended up doing. 18th March later is when the police had finally, according to Muskan and what she had, the entirety of the account she had confessed, they had found Saurabh's mortal remains from that very drum. Imagine the plight of the parents who had to see the fact that this is the condition that their son was in. And that's the same mother who spoke a little while back and said that no matter which court Muskan's family goes to, or Muskan and Sahil's side goes to, they will go and appeal for the same judgment, same punishment in each and every court. Then May 2025 is when the police had filed a lengthy charge sheet of almost 1,000 pages where they'd come out to, in fact, detail out the entirety of the injuries, what state the body was, in fact, found in. 30th September, finally, 2026, months later, this is almost a year later that we're speaking of, more than a year later, after 126 hearings is when the court had convicted Muskan Rastogi and Sahil Shukla. And today, as we speak, on 14th of October, is when the court has given them a death penalty for both, which is the highest of punishment, the rarest of rare punishments that we see at this given point that's been given to the duo. But at the same time, while we say it's the rarest of rare punishments, perhaps the crime, if one looks at it, is also a rather rare one. Just think of it. In fact, when this case had come in, we had in fact been taken to the entirety of that Shraddha Walkar case that had happened 2023. That time the victim was a woman, this time it is a man, Saurabh Rajput, that we are speaking of. And he was killed this mercilessly by his own wife, who had taken a lover, and that was the alleged reason that had come to the forefront when the hearings were going on, that they wanted to be together, that is Sahil and Muskan, which is why she wanted to escape from the marriage, and which is why she had proceeded to in fact take this entire drastic step. But at the end of the day, that's what the mother came out to appeal. Saurabh's mother has given a very good message at this given point, that you may not agree with who you have been married to, but you always have the option to leave. Do not end someone's life for a reason like this. It's too small. There is no reason justified to end someone's life, let alone the reason that had been cited by Muskan at this given point to end Saurabh's life in the way that they had. This was, in fact, a brutal crime, a gruesome crime, and a mercilessly executed crime. After which, not only were the duo not guilty, but they actually, the bizarre part of it was, they were so, at that given point, in that situation, entirely consumed by that situation, that they had left for a vacation. not even on the run, but a proper vacation. Photographs of it had in fact come out later on of how they were touring Himachal Pradesh later on, right after this crime had been committed by them itself. We have Arvind Ojha back with us at this given point. Let me take the questions to him now. Arvind, अगर हम एविडेंस के तौर पे बात करें और अगर हम विटनेसेस की बात करें, आप जैसे कह रहे थे कि जिन जिन होटलों में वो रुके हुए थे, जहां जहां उन्होंने विजिट किया था हिमाचल प्रदेश टूर करते वक्त, उन्होंने सबने बयान दिया था, तो काफी क्लियर कट एविडेंस के तरफ से काफी सील्ड थी ये केस कि हाँ इन्होंने ही इस तरीके से मर्डर किया है और उसके बाद वो लोग भाग गए थे हिमाचल में।
1: बिल्कुल, और देखिए इस मामले में एविडेंस की अगर बात की जाए तो जो चाकू बॉडी पार्ट्स काटने के लिए इन्होंने खरीदा था, वो चाकू जहां से खरीदा था वो उसका नाम राकेश कुमार था। उससे पुलिस ने स्टेटमेंट लिया था जिसमें उसके अलावा चाकू के अलावा उस तरह जो सलून में अमूमन इस्तेमाल करते हैं वो जिसे खरीदा था उसका स्टेटमेंट यूपी पुलिस ने रिकॉर्ड किया था। साथ ही साथ उस जगह पर जो साहिल और मुस्कान है उनको लेकर गए थे। ड्रम जिससे खरीदा था सैफुद्दीन उसका नाम था, उसने गवाही दी थी, मुस्कान और साहिल को पहचाना भी था और उन्होंने बोला था कि यही दोनों आए थे और ये कहे थे कि अनाज रखने के लिए ड्रम रखना ड्रम लेना है, ब्लू ड्रम। उसके अलावा जो सीमेंट जिससे खरीदा गया था उसका नाम अक्षय शर्मा था, उससे दोनों ने सीमेंट खरीदा था बॉडी को छिपाने के लिए। उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफएसएल की टीम के जो एविडेंस है वो, उसके अलावा ये मर्डर के बाद जो सौरभ राजपूत का मोबाइल फोन है वो लेकर कसौल गए थे और वहां से लगातार ये मैसेज कर रहे थे सौरभ के फोन से फैमिली वालों को गुमराह करने के लिए। तो कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा पेज की ये चार्जशीट फाइल हुई थी, इसमें सुनवाई हुई, उसके बाद केस ने इसे कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का केस माना और डेथ पेनल्टी की जो सजा है वो मुस्कान और साहिल को सुनाई है। आपको याद होगा जब ये केस हुआ था और जिस तरह से इसका खुलासा यूपी पुलिस ने किया था, पूरे देश भर में ये केस चर्चा में आया था कि किस तरीके से मुस्कान ने अपने हस्बैंड का मर्डर अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया, उसके बॉडी पार्ट को काटा, उसके बाद उसे ब्लू ड्रम में बॉडी पार्ट को छुपाया, सीमेंट से ढका ताकि उसकी बदबू ज्यादा देर तक बाहर ना आए। लेकिन धीरे धीरे करके इस केस का खुलासा यूपी पुलिस ने किया और पूरे एविडेंस कलेक्ट कराए, जहां से चाकू और उस तरह खरीदा था उस शॉपकीपर के पास, उसके बाद वहां पर साहिल और मुस्कान को
0: और काफी अगर अगर अगर अगर हम देखें इस चीज को तो काफी डिटेल चार्जशीट भी फाइल की थी पुलिस ने। अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। दिस वाज अ केस दैट हैड इन फैक्ट बीन हर्ड फॉर टू मेनी टाइम्स, 126 हियरिंग्स, दैट्स व्हाट वी वर काउंटिंग फॉर यू, 13 मंथ्स लॉन्ग ट्रायल एंड देन केम अ कन्विक्शन एंड फाइनली अ डेथ सेंटेंस फॉर द डुओ इन अ केस which was equally shocking and bizarre and now the rarest of the rare punishments that have been given and awarded in this very case. On that note, we'll be slipping into a short break, but let us tell you, on the other side, we will be taking you to a different story, one that's also been developing very fast and it's also a heated up story that we're speaking of, which is from Punjab at this given point. It is a certain murder case, bulldozer action on the Punjab killer chemist who killed the anti-drug activist Jota. Shooter Ashwini's home, remember, has now been demolished after he was arrested from Rajasthan and the shop of the accused was pelted with stones and completely burned. This with more details on the other side as we come back. Stay tuned.

ये हिंदुस्तान है। अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है। और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं। मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए, इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से, देखिए मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए, इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए। जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक, नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: दिस वीक इंडिया टुडे एक्सप्लोर्स व्हाट द एआई रिवॉल्यूशन मींस फॉर इंडिया The AI threat, new opportunities to emerging risks. Leading experts decode what the AI revolution means to India. Read the full story in the latest issue of India Today, Making Sense of India. Now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe at subscriptions.intoday.in.

आपने सुना होगा LPA, LPA एक लाइपोप्रोटीन है, एक ब्लड में मेजर होता है। अब LPA देखा गया है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। पहले सोचते थे कि अगर फैमिली में चल रहा है तो शायद एक मार्कर है जिससे पता चल जाता है कि शायद हार्ट डिजीज ज्यादा होगी। अब ये एक मार्कर, ये अब ये रिस्क फैक्टर है। और हमारे हिंदुस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में ये वेस्ट से ज्यादा पाया जाता है। तो दिस इज अगेन जेनेटिक्स। हमारे लोगों में LPA बहुत हाई है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज नहीं हुई है, बट एटलीस्ट ग्रुप्स में देखा गया है और दूसरे कंट्रीज की पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज में देखा गया कि हिंदुस्तान में LPA ज्यादा होता है। और ये LPA सिर्फ अगर वेस्ट में LPA हाई हो तो अगर हम कहेंगे कि डेढ़ गुना रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ गया, बट हिंदुस्तानी में ये भी देखा गया कि LPA सेम लेवल का LPA हाई हो तो हिंदुस्तानी में तीन गुना ज्यादा हार्ट डिजीज हो जाता है। सो वी आर सफरिंग फ्रॉम टू साइड्स ऑफ जेनेटिक्स। और फिर वो जो बात आई कि और क्या चीजें हैं हिंदुस्तानियों में, तो वो तो क्लियर है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन। 30% एडल्ट्स अबव द एज ऑफ 30 हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं। और मैंने कह ही दिया कि कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह जो हमारे बड़े में है, स्पेशली लो HDL कोलेस्ट्रॉल और रेस्ट ट्राइग्लिसराइड्स। तो एक्चुअली यही है हमारा जीन्स और यही है हमारी किस्मत। सो एक एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ, अनफॉर्चुनेट।

आज जो नुकसान दिल्ली राज्य का हुआ है हजारों करोड़ रुपए का, व्यापारी तंग है, जनता तंग है, ये सिर्फ उनके कारण से। आपको धरना करना है, आपको प्रदर्शन करना है, क्यों करना है? एक डेमोक्रेसी में जो सिस्टम चल रहा है उसका विरोध करना है, क्योंकि आपकी सरकार नहीं बनी है। मैं पूछना चाहती हूं, जो तमिलनाडु में अगर आपकी सरकार बन गई, केरल में आपकी सरकार बन गई, तो SIR नहीं हुआ वहां पे? जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं बनी आपको वहीं पे ध्यान में आता है? कहां जाती है ये CJP? वहां जब कुछ मुद्दा होता है तो वहां प्रदर्शन करने नहीं जाते? अब ये ड्रग के कारण से जो कल मर्डर हुआ है, तो जाए CJP पंजाब में प्रदर्शन करने के लिए? क्यों आम आदमी पार्टी की बी पार्टी बन करके वो केवल उसी राजनीतिक एजेंडा पे काम करती है जो आम आदमी पार्टी उनको कन्वे करती है?

0: मैंने परसिवियरेंस शब्द यूज किया कि ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तीन महीने बाद, तीन महीने बाद नहीं तो तीन, छः महीने बाद, छः महीने बाद नहीं तो एक साल, नहीं तो दो साल, ये रुकने वाली नहीं, ये एंड गोल तक जाएगी।
1: फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है, आपकी वहां कोई रीच नहीं है।

मुलाहजा फरमाएं। खाने में डालेंगे घी, देसी देसी देसी देसी, देसी, देसी, देसी। खाने

0: इस कैबिनेट में आज सबसे पहले रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए, स्टाफ के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस, 78 डेज का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो कि हम लोग जब त्यौहार में रहते हैं तब वो फील्ड में, ट्रैक पे, लोगों के अंदर, वर्कशॉप के अंदर दिन रात मेहनत करते रहते हैं। उन सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए ये दीपावली का उपहार है। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है, 2009 करोड़ रुपए का।
1: एज लॉन्ग एज वी गेट अ फेयर डील, एज लॉन्ग एज वी आर इंश्योर्ड कंटिन्यूटी इन द एंगेजमेंट एंड एज लॉन्ग एज द जियो पोलिटिकल सिचुएशन डज नॉट डिटेरियोरेट, आई थिंक वी हैड सम कंसर्न्स इन द पास्ट। We are working to develop the relation with China once again, but the last word has not yet been scripted on this journey.
2: Do you think India's relationship with the US will improve after this president?
1: After this?
3: President.
1: Of course, it is already very good. I don't see any problem as we speak also. And to my mind, the relationship with the US that India enjoys is very substantive, is very consequential for the world, being two large democracies. One must bear in mind that it's not only about trade, which of course they are our largest trading partner, and I think will continue to be in the years to come. And by and large, I don't see any problem in any agreements also with the United States.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: यार लोन भूल गया मैरी।
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना।
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
5: इट। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
6: So many payment apps, but which one is safe?
7: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
8: It's the Mahi way.
9: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Woh bhi har mahine.
10: Money, money, money, money, every month.
11: Soch batlo aur bank bhi.

0: Sí.
1: देश का टायर, जेके टायर। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: आज जो नुकसान दिल्ली राज्य का हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का, व्यापारी तंग है, जनता तंग है, ये सिर्फ उनके कारण से। आपको धरना करना है, आपको प्रदर्शन करना है, क्यों करना है? एक डेमोक्रेसी में जो सिस्टम चल रहा है उसका विरोध करना है, क्योंकि आपकी सरकार नहीं बनी है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो तमिलनाडु में अगर आपकी सरकार बन गई, केरल में आपकी सरकार बन गई, तो SIR नहीं हुआ वहां पे? जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं बनी आपको वहीं पे ध्यान में आता है? कहां जाती है ये CJP? वहां जब कुछ मुद्दा होता है तो वहां प्रदर्शन करने नहीं जाते? अब ये ड्रग के कारण से जो कल मर्डर हुआ है, तो जाए CJP पंजाब में प्रदर्शन करने के लिए? क्यों आम आदमी पार्टी की बी पार्टी बन करके वो केवल उसी राजनीतिक एजेंडा पे काम करती है जो आम आदमी पार्टी उनको कन्वे करती है?

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: मैंने परसिवियरेंस शब्द यूज किया कि ये जो हमारी टीम है ये रुकने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तीन महीने बाद, तीन महीने बाद नहीं तो तीन छः महीने बाद, छः महीने बाद नहीं तो एक साल, नहीं तो दो साल, ये रुकने वाली नहीं, ये एंड गोल तक जाएगी।
5: फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है, आपकी वहां कोई रीच नहीं है।
6: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडी एवरीथिंग देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: So many payment apps, but which one is safe?
3: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
4: It's the Mahi way.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: EU
3: सोच बदलो और बैंक भी।

इस कैबिनेट में आज सबसे पहले रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए, स्टाफ के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस, 78 डेज का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो कि हम लोग जब त्यौहार में रहते हैं तब वो फील्ड में, ट्रैक पे, लोगों के अंदर, वर्कशॉप के अंदर दिन रात मेहनत करते रहते हैं। उन सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए ये दीपावली का उपहार है। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है, 2009 करोड़ रुपए का।

0: सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम। और जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते वो अपने अपने शहरों में शाम को तिरंगा मार्च निकालिए और बता दीजिए इन लोगों को, इन तानाशाह को, कि हमारा तिरंगा हमारा प्राइड है और उसे लहराना कोई क्राइम नहीं है।
1: लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी कॉल्ड द जेलिंग ऑफ रंका एन दास एन एक्ट ऑफ कावर्डिस। डिपके प्रॉम्प्टली थैंक्ड हिम फॉर द सपोर्ट। सेवरल स्टूडेंट बॉडीज इंक्लूडिंग एनएसयूआई लेड अ मार्च ऑन वेडनेसडे टू रिक्लेम जंतर मंतर एज अ प्रोटेस्ट साइट। Earlier, Rahul Gandhi presented NSUI members who were allegedly manhandled by the police on Tuesday during protest.
2: ये शेर नहीं है। ये शेर नहीं है। जान रहे उसको? ये शेर नहीं है। इसको मारा? कोई डर नहीं लगा? डर लगा?
3: नहीं लगा सर। नहीं लगा।
2: नफरत थी दिल में?
3: नफरत नहीं थी, प्रेम था। जितना मारा हमने ये बोला खुला, आज मन जितना है उतना भर के मारो।
1: द बीजेपी हिट आउट द कांग्रेस अक्यूजिंग द ऑपोजिशन ऑफ मिसलीडिंग द यूथ।
4: राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए, ये देश के युवाओं को लगातार भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हर बार खुद इल्लीगल असंवैधानिक बात करते हैं, अराजक बात करते हैं। आज सौरभ दास और आशुतोष रांका, उनको अगर मजिस्ट्रेट साहब ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा है तो उसके पीछे का कारण उन्होंने स्वयं बॉन्ड भरा था कि वो 1 साल तक कोई भी इल्लीगल असंवैधानिक गैर कानूनी हरकत नहीं करेंगे। उन्होंने फिर जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन किया है।
1: The opposition parties have announced they will start a movement to reclaim Jantar Mantar as a protest site. The matter has reached the Supreme Court as well, with a petitioner filing a public interest litigation against the police decision to bar protest at Jantar Mantar. Bureau Report, India Today.
5: Okay, now what I'm going to do is bring student leaders together, because these flash protests that you're seeing are being now led by youth. And I want to raise some questions. Will the unity of this cockroach Janata Party with the Congress last? Are these flash protests to be seen as reasonable? Are they justifiable? And are the arrests of Gen Z protesters justified in any way, sending them to Tihar? Joining me now is Meher Pasricha, National Spokesperson of the cockroach Janata Party. Shravan B. Raj is National Secretary, ABVP. And Varun Chaudhary is AICC co-in-charge and former National President of the NSUI. Good to have all of you on the show. I want to come to you, Meher, first. You see, there were clear rules that Jantar Mantar has been denotified as a protest site. Yet, your leaders, Ashutosh Ranka and Saurabh, went there in the morning yesterday chanting slogans. The police says this was a violation of the rules. They have gone by the BNSS segments, which clearly say that you cannot have any kind of protest, they say, at Jantar Mantar. Therefore, they had to be arrested, particularly since they had signed a bail bond just a few days ago, saying, or a surety saying that they will not engage in any activities that will disrupt peace.
6: Thank you, Rajdeep. Yes, sure. I think, Rajdeep, the way we simply see it is that there was an arbitrary denotification of Jantar Mantar. Mm-hmm. Absolutely arbitrary, that came literally 30 minutes after we visit the police station to ask for the protest site. And therefore, it becomes a public ground. And it becomes okay for someone to use that public ground to show the national flag and then to be say Bharat Mate Ki Jai. Truly, that was what was happening there. And then we sort of made Central Delhi this fortress. And so simply, if a group of people are occupying a public space and raising flags, what is the problem with that?
5: The problem, they say, is that this was not just a simple Bharat Mata Ki Jai and raising flags. It was deliberately provocative to suggest that Jantar Mantar cannot be denotified in this manner. The government claims once we've denotified it, once we've applied the relevant sections of BNSS,

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: So many payment apps, but which one is safe?
5: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
6: It's the Mahi way.

आज जो नुकसान दिल्ली राज्य का हुआ है हजारों करोड़ रुपए का, व्यापारी तंग है, जनता तंग है, ये सिर्फ उनके कारण से। आपको धरना करना है, आपको प्रदर्शन करना है, क्यों करना है? एक डेमोक्रेसी में जो सिस्टम चल रहा है उसका विरोध करना है, क्योंकि आपकी सरकार नहीं बनी है। मैं पूछना चाहती हूं, जो तमिलनाडु में अगर आपकी सरकार बन गई, केरल में आपकी सरकार बन गई, तो SIR नहीं हुआ वहां पे? जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं बनी आपको वहीं पे ध्यान में आता है? कहां जाती है ये CJP? वहां जब कुछ मुद्दा होता है तो वहां प्रदर्शन करने नहीं जाते? अब ये ड्रग के कारण से जो कल मर्डर हुआ है, तो जाए CJP पंजाब में प्रदर्शन करने के लिए? क्यों आम आदमी पार्टी की बी पार्टी बन करके वो केवल उसी राजनीतिक एजेंडा पे काम करती है जो आम आदमी पार्टी उनको कन्वे करती है?

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इस कैबिनेट में आज सबसे पहले रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए, स्टाफ के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस, 78 डेज का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो कि हम लोग जब त्यौहार में रहते हैं तब वो फील्ड में, ट्रैक पे, लोगों के अंदर, वर्कशॉप के अंदर दिन रात मेहनत करते रहते हैं। उन सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए ये दीपावली का उपहार है। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है, 2,009 करोड़ रुपए का।
1: मिस्टर मोदी, हु इज द मेन आर्किटेक्ट, मिस्टर अमित शाह, हु इज द इम्प्लीमेंटर, मिस्टर ज्ञानेश कुमार एंड अदर्स, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट द नेट इज क्लोजिंग अराउंड देम। इट इज नॉट गोइंग टू बी सो सिंपल दैट यू कैन डिस्ट्रॉय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गेट अवे विद इट।
2: मैं श्री राहुल गांधी जी को सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या ये SIR का परिणाम है? SIR तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है।

मुलाजा फरमाएं, खाने में डालेंगे घी, देसी देसी देसी देसी, देसी, देसी, देसी।

0: What is the problem with that?
1: The problem, they say, is that this was not just a simple Bharat Mata Ki Jai and raising flags. It was deliberately provocative to suggest that Jantar Mantar cannot be denotified in this manner. The government claims once we've denotified it, once we've applied the relevant sections of BNSS, you cannot go there.
0: And to that, Rajdeep, yes, it was provocative, simply the same way that it has been provocative that the protest site was denotified in this arbitrary fashion, that we don't know how what stakeholders were consulted, what views were taken into consideration for this denotification. And we also know the history of moving protest sites further and further away from the seat of government. There were various protest sites notified along with this order, and they 10 kilometers away, 20 kilometers away. And it's just a systematic dismantling of protest and dissent in itself.
1: Systematic dismantling of protest itself. Varun Chaudhary, interestingly, Rahul Gandhi, among those without naming the CJP, he said, is it a crime to shout Bharat Mata Ki Jai and wave the tricolor at Jantar Mantar? Are we seeing the first signs that the Congress wants to reach out to the CJP? We were told even yesterday at Rahul Gandhi's high tea, there was an attempt made to get the CJP to have a presence. Is the Congress comfortable with joining hands with the Cockroach Janata Party?
2: See, Rajdeep, Rahul ji clearly says from day one. Rahul ji LOP hai pure desh ke, India ke. Leader of opposition is the कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट हुआ और मैं आपसे बात करना चाहूंगा 2012 पे आपको एक बार लेकर जाना चाहता हूं 2012 में प्रोटेस्ट होते थे प्रोटेस्ट मिसेस गांधी के घर के बाहर भी होते थे प्रोटेस्ट राहुल गांधी जी के घर के बाहर भी होते थे वो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो या दामनी वाले जब दिल्ली में रेप केस हुआ था उसके टाइम पे मिसेस गांधी के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट होते थे लेकिन डिफरेंस ये था जब प्रोटेस्ट होते थे तो खुद राहुल जी अपने घर के बाहर आके प्रोटेस्टर्स से मिलते थे बातचीत करते थे सेम मिसेस गांधी सोनिया जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट होता था तो वो बाहर आके मिलती थी ना कि यह होता था कि 3-4 एक्टिविस्ट आके क्लेम करने के जनता अंदर प्रोटेस्ट करेंगे उनको इलीगली डिटेन करा गया और जेल में डाला गया तो राहुल जी ने क्लियरली ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करेगा हमारा राइट टू फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसके ये सरकार उसको ब्रेक करने का काम कर रही है कोई भी स्टूडेंट्स हैं
1: डू यू हैव अ कॉमन क्या आपका कॉमन डू यू हैव अ कॉमन मिस्टर चौधरी डू यू हैव अ कॉमन कॉज Do you have a common cause with the Cockroach Janata Party? Kya aap aur Cockroach Janata Party, are you on the same platform?
2: We have a clearly common cause, right to freedom. We have a clearly cause ki wo bhi wohi baat kar rahe hain. Aur might be, in future, ki BJP ke koi minister ka beta bhi aake protest kar raha hoga, constituent ko bachane ke liye, toh might be, wo LOP hain, unko hi bol denge, you are right, aap log theek baat kar rahe hain. Toh reality hai, mujhe lagta hai, jaise main baat karun, main pala openly aap log bolta hun, mere family ke kuch members, first time abhi Supreme Court protest mein part lene aaye. Toh wo isliye nahi aaye the, ki wo Congress party mein hai ki nahi, wo isliye aaye the, ki wo chahte hain ki desh mein free and fair elections ho. तो कुछ लोग हैं जिनका इंटेंट क्लियर होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज एसोसिएशन नहीं होते तो यही था ये जो तीन लोग हैं वो सौरभ दास हो लंका हो उनका जो जेल भेजा गया है वो बिल्कुल ही क्लियर वर्ड्स में बोलता हूँ इलीगल है उनको जेल में नहीं डालना चाहिए वो एक नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे ये बात राहुल जी ने करी है वो कल को कोई भी होगा माइट बी बीजेपी और मैं बताऊं कि आप अगर जंतर मंतर अभी सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेस्ट की बात करें तो कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के बच्चे भी मास्क लाके प्रोटेस्ट करने आए हुए थे उनको खुद पता है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन सेव करना है तो जो भी हो एलओपी राहुल गांधी जी वो देश के इंडिया के एलओपी हैं वो कांग्रेस सेकेंडरी आती है लेकिन पहले वो देश के एलओपी हैं और वही उन्होंने क्लियरली अपने ट्वीट्स में बोला है वही क्लियरली सपोर्ट करा है और ये पहली बार नहीं हर बार है
1: उनके घर के पास Varun, I've heard you. Shravan Raj, National Secretary ABVP, how do you see these protests, flash protests, that in a way in defiance, one day it's the CJP, one day it's the left, one day it's the NSUI, all of them are coming together. Do you feel that groups like the ABVP are losing out because these are now these three grew the left, the CJP and the NSUI are occupying that entire space of these flash protests.
3: No, never. This can be considered just as a seasoned protest by the seasoned politicians of the country. If you are seeing the history of this recent Jandar Mandir 1 and the 2.0 protest, we can see an rise of the alternative politics in the country. A group of organization, because single-handedly they will fail to mobilize people. So that's why 20, 30, 40, hundreds of organizations coming together and creating anarchy in the streets, because